0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
5: हे तुमने कभी इंश्योरेंस लिया कभी पॉलिसी समझ भी आया
6: नहीं आया
5: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर नो कंफ्यूजन नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772 That's 972-863-772
4: Visit www.senadainc.com today
7: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
8: It's Lawson
7: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
8: It's Lawson
7: Daddy what is the law
9: It's Lawson Travels for all your travel needs Give them a call today 214-631-2458 The Travel Experts Lawson Travel
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
12: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
14: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
15: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
14: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
16: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support or har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
17: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort Durant में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम

हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ. इट इज 7:05 ऑन द क्लॉक एंड दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड योर बेस्टी इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस ओनली ऑन फनीशर रेडियो 104.7 FM 104.9 FM. अरे आज कुछ भी हो रहा है यार, सारे नंबर शंबर सब गड़बड़ हो रहे हैं. आई एम अ लिटिल टायर्ड, जैसे मैं रोज ही होती हूँ, लेकिन आई होप यू आर फुल ऑन एनर्जाइज बिकॉज यू नो वट, वी गॉट सम अमेजिंग स्टफ फॉर यू लाइंड अप टुनाइट. सो स्टे ट्यून्ड, आई गॉट सम स्टोरीज टू शेयर विद यू एंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स.

Hello everyone, we are back. Hey, somewhere I was reading that ये जो अमेरिकन ड्रीम है ना इज नॉट रियली एन अमेरिकन ड्रीम एनीमोर बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड अपहोल्ड ऑल दोज सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम. लेकिन वी डू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स बिल्डिंग योर ओन हाउस एंड बिल्डिंग योर ओन होम इज अ ड्रीम दैट वी ऑल हैव एंड दैट इज वेयर ड्रीम होम मॉर्गेज कम्स इन टू प्ले. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद द ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशंस एंड ए स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द बेस्ट लोन ऑप्शन फॉर यू टेलर्ड टू योर नीड्स वेदर यू आर बाइंग First time home, upgrading, or refinancing. Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dreams home happen. भाई आपका कोई भी घर हो, छोटा सा घर हो, टू बेडरूम का कॉन्डो हो, बड़ा सा घर हो, विद अ बिग बैकयार्ड एंड अ टायर स्विंग एंड वगैरह वगैरह. यू नो दैट दोज आर द गाइज यू नीड टू कॉल. वट एवर योर ड्रीम रियालिटी ड्रीम होम इज, दिस इज द These are the people you need to call. You know what my dream is? My dream is to have a house with giant, huge, massive windows that face the light and face the sun. I know Dallas में वो बहुत गर्म हो जाएगा घर, क्योंकि इतनी धूप आती है कि घर के अंदर आग बबूला हो जाएगा. लेकिन आई लव लाइट यार. वॉट टू डू, वॉट टू डू. ठीक है, आई ऑल्सो हैव अ विजन बोर्ड. तो मेरी तरह अगर आपके पास भी ऐसा कोई विजन है, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज. Well, अभी थोड़ा सा कुछ कुछ गाने एक साथ बज रहे हैं, तो लेट मी जस्ट फिक्स दैट. ये ना कई बार क्या होता है, हम गाने लगाते हैं और कुछ और ही चल रहा होता है, तो लेट मी फिक्स दैट रियल क्विकली एंड देन हियर वी गो.

friends, it is 7:54 on the clock and we are about to go into a break really, really soon. Lekin jaane se pehle, did you know that only like 1 in 5 Americans actually have an emergency fund, and most people still think ki bhai paise hum $200 jod ke har mahine 200-500 jaise bhi aap jama kar sakte ho, jama karke somehow we will retire and become wealthy, and somehow that is how we are going to spend our entire life, thode thode paise jama karke. Lekin bhai agar aap puri itne sare paise jama bhi kar lo na, bilkul apni cost cutting karke, कोई कॉफ़ी नहीं पी के, कोई स्टारबक्स नहीं जाके, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना वाना ना खा के, तो भी अगर आप बहुत सारे पैसे जमा कर लोगे ना, फिर भी आपकी रिटायरमेंट उतनी कंफर्टेबल नहीं होने वाली है. बिकॉज यू नो व्हाई, इट्स नॉट इनफ आफ्टर 20 years 30 years, यू डोंट नो व्हाट द इन्फ्लेशन इज गोना बी लाइक. तो इसीलिए यू नीड टू प्लान स्मार्टर, ओके, यू नीड टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज. दैट इज व्हाई माई टाइम इक्विटी लेड बाय सुधीर पाए comes into picture. They help individuals and families build smarter financial strategies either through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. Agar aap long term wealth planning kar rahe hain, retirement planning kar rahe hain ya investments grow kar rahe hain, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals, and therefore in order to get more information visit mytimeequity.com or call 469-702-1272. Tab tak ke liye aap ye gana enjoy kariye.

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: आर यू गेटिंग द बेस्ट वैल्यू ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस और एन्युइटी नीड्स? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
3: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ।
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, adjuncts and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Live safe with Duck Time.
10: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
11: And I want you to have so much fun today. Today is Wednesday. We are halfway through the week, you guys. सिर्फ 2 दिन बचे हैं एंड देन यू हैव द वीकेंड अगेन, सो अमेजिंग। और मैं आपके साथ सिर्फ आज और सिर्फ कल रहने वाली हूँ, क्योंकि फ्राइडे मेरे होते हैं छठे। तो गाइस, जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक्चुअली मैंने ऐसा कोई थीम आज पकड़ा नहीं है, लेकिन आई जस्ट गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम जिमरान। जिमरान, दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू, हैव फन। And just in case you're wondering, who is this? Ye kaun bol raha hai? Guys, this is Ippy the Hippie. And you are listening to my show, An Evening in Dallas, on Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: Guys, today I came across this really amazing thing. And you know what? See, drag shows have been popular in America for a really, really long time. ठीक है, उसमें कोई नई बात है नहीं. इट्स बिन देयर फॉर लाइक एजेस, इयर्स, डेकेड्स. यू नो, दे हैव बिन फॉर एवर बिन देयर. लेकिन अभी अमेरिका में, आई डोंट नो, इंडिया में भी है, बट इट्स ओनली इन द आर्ट सर्कल, क्योंकि मैंने देखा है तो मुझे पता है. बट इन अमेरिका देर इज ए बॉलीवुड ड्रैग ब्रंच दैट हैपन्स इन सम सिटीज एंड इन डैलस ऑल्सो, DFW ऑल्सो देर इज ए ग्रुप दैट डज दीज ड्रैग, बॉलीवुड ड्रैग नाइट्स. एंड आई थिंक इट्स जस्ट सो फन. आई रियली वॉन्ट टू गो फॉर वन ऑफ दोज. अभी मैं उनका नाम नहीं बोल सकती बिकॉज यू नो रेडियो रूल्स एंड रेडियो रेगुलेशंस के हिसाब से आई एम नॉट अलाउड टू प्रमोट एन एक्सटर्नल बिजनेस अनलेस वी हैव प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट. तो इसीलिए मैं नाम नहीं बोलूँगी. लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे बॉलीवुड ड्रैग शोज इन डैलस, आई एम श्योर समथिंग विल कम अप. एंड इट्स क्वाइट फन. आई मीन, इफ यू आर इन टू दैट स्टफ, और इफ यू आर यू नो ए यंग पर्सन हु लाइक्स वॉचिंग ड्रैग क्वीन्स डू देयर थिंग, यू नो लाइक रूपॉल्स ड्रैग रेस एंड एवरीथिंग, दिस इज द प्लेस टू गो.
1: Subscribe now.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो.
7: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
16: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant. हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
8: Guys, 8 baj chuke hain and this is Ippy the Hippie, your bestie here on Fun Asia Radio 104.9 FM. और 8 बजे हम सबको पता ही है क्या होता है, गिव अवे का टाइम होता है. लेकिन गिव अवे में जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस, एंड दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. वो ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है, एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. कॉल 4699429888 और विजिट agfintechs.com. अगर आप बिजनेस ओनर हैं या फिर यू आर अर्निंग मोर देन 200,000 अ ईयर, देन दिस सेमिनार इज फॉर यू. दे आर होस्टिंग अ सेमिनार यू गाइज, एंड इट्स गोना हैव अ लॉट ऑफ रियली गुड information about taxes and financial planning, especially if you're a business owner. Join AG Fintechs for a free tax planning seminar and discover legal strategies that help you reduce your tax burden by smart planning on July 10th, which is in about 2 days, which is going to be on Friday, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen in Frisco. There's more. Attendees who register for this seminar, you get free special gifts. Woo! We all love, you know, special gifts and stuff. So, seats are limited. Reserve your spot today. Register at agfintechs.funasia.net. I think this is a really good opportunity for people who don't know how to figure out their tax strategies, especially if you're like a business owner or self-employed for that matter. So, aap zarur jaiye इस टैक्स सेमिनार में एंड सी मे बी दे कैन हेल्प यू रिड्यूस द टैक्स बर्डन, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द ईयर वो 8-10,000 डॉलर का जो एक बड़ा सा धक्का लगता है ना वो टैक्सेस देने का. W-2 वालों को ना सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्सेस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरे को भी देनी पड़ती है. ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले टैक्सेस है, वी हैव टू पे मोर इन टैक्सेस देन रेगुलर W-2 एम्प्लॉयज, बिकॉज यू नो वी हैव टू पे आर ओन सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्सेस एज वेल. तो Make sure you go to the seminar because it's going to be super informative. मुझे तो time नहीं मिलेगा जाने के लिए, लेकिन आप जाके मुझे information जरूर बताना, ठीक है? Maybe I can also save some money. तो आगे बढ़ते हुए खेलते हैं हमारा giveaway. As you know, हमारा giveaway क्या है? It's super, super, super easy. You know, it's the same. Every time I play you a song and you have to tell me the Bollywood copy of that song. It's super simple. ये पहला वाला तो बहुत ही आसान है. It is so popular. There's no way you are not gonna get it. And I'm sure my studio is gonna be flooding with a ton of calls. So my phone number is 972-235-5555. That's right. 972-235-5555. Call me on this number and then answer the question. So ready? लेकिन पहले ये तो बता दूं आप जीतोगे क्या. अरे मैंने इतना कुछ बोल दिया, मैंने यही बताना भूल गई. पहला गिव अवे है हमारा फन पिज्जा किचन की तरफ से. भाई फन पिज्जा किचन इज दैट प्लेस जहां पे वो सेमिनार भी होने वाला है एंड यू कैन ऑल्सो हैव सम यमी यमी देसी स्टाइल पिज्जाज, चाहे वो अचारी पनीर पिज्जा हो, तंदूरी चिकन पिज्जा हो, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास. दैट चीज केक इज एब्सोल्युटली डिवाइन, सो यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट. अगर आप ये गिव अवे जीते हैं देन यू गेट ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. ठीक है, चलिए खेलते हैं विदाउट फर्दर अडू एंड हियर गोज द सॉन्ग.

Gila, gila, gila, gila, gila. Mila, mila, mila, koi mila, mila. Same song hai. मतलब इतने सारे कॉपीज हैं, थोड़ा मजा ही आता है सुनने में. लाइक अरे इसको तो डीजे, जो डीजेज होते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है ये करने में, बिकॉज यू गाइज कैन लिटरली ब्लेंड इन द बॉलीवुड एंड द हॉलीवुड सॉन्ग्स टुगेदर. आपका आधा मिक्स तो मैंने ही बना दिया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है. चलो गाइज, आई प्ले यू अ डिफरेंट सॉन्ग दिस टाइम, एंड वेन वी कम बैक अराउंड 8:30 देन वी विल हैव द सेकेंड गिव अवे. द सेकेंड गिव अवे इज फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर, सो स्टे ट्यून्ड.

0: Guys, I am back. This is Ippy the Hippie, and y'all are listening to Funasia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. Jaane se pehle, we were talking about so many amazing things. I have this amazing story I want to share with you guys today. It's about this lady called Sona Bai, and I actually came across her story on Instagram as I was doing my doom scrolling, jaise main roz hi karti hu. Lekin this story is very, very inspiring and super inspirational. So that's why I really want to share it with you guys. But for that, you have to stick around until after 8:30. 8:30 hamara second giveaway hone wala hai. And then we are going to have the story time for you guys. But until then, आप लोग जाएं, ब्रेक में जाएं, पानी वानी पी लें वगैरह, वॉशरूम वगैरह जाना है, कहीं भी जाना है, जाओ जाओ, सब करो. एंड देन कम बैक एंड लिसन टू मी टॉक फॉर अनदर आवर एंड अ हाफ, बिकॉज़ आई एम गोना बी हियर ऑल द वे टिल 10 o'clock. तो वेल, स्टे ट्यून्ड एंड वी हैव सम अमेजिंग स्टफ कमिंग अप.
1: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही हूं.
9: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
10: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: It's Lawson.
13: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
14: It's Lawson.
13: Daddy, what is the law?
15: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travels.

0: बड़े धोखे
1: बड़े
0: हैं,
1: धोखे हैं,
0: बड़े
1: बड़े
0: धोखे
1: धोखे हैं
0: इस राह में। अरे वाह, तालियां, आप जीत चुके हैं RHCB की तरफ से गिव अवे। वूहू।
1: थैंक यू सो
0: ओके,
1: मच.
0: श्रुतिका बी ऑन द लाइन। ठीक है, मैं एक ये गाना बजाती हूँ। गाइस, आप ये वाला गाना एंजॉय करिए। इट इज़ बाबूजी धीरे चलना, फ्रॉम ओरिजिनली वैसे पुरानी मूवी का है, बट आई एम गोना प्ले योर रीमिक्स वर्जन और रीअरेंज वर्जन रादर। एंड श्रुतिका, यू स्टे ऑन द लाइन, आई टेक योर इन्फॉर्मेशन आफ्टर। ठीक है? ओके गाइस, एंजॉय द सॉन्ग।

गाइस वी आर बैक। और अभी आपको पता है ना, संडे को वो होने वाला, क्या बोलते हैं, विशाल शेखर का कॉन्सर्ट होने वाला है, आपको पता है ना। वेल इफ यू डोंट नो इट, देन आई शुड टेल यू दैट। हैंग ऑन अ सेकेंड, लेट मी क्यू द नेक्स्ट सॉन्ग। थोड़ा फटाफट फटाफट करना पड़ता है, यू नो, इट गेट्स लाइक क्वाइट क्रेजी। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हो यार, मेरे पूरे 3 घंटे के शो में सेकंड एनीवेज है, तो चलेगा, आई थिंक इतना तो चलता है। तो गाइस 12th जुलाई को विशाल शेखर आने वाले हैं। डैलस बॉलीवुड फैंस, दिस इज फॉर यू गाइस। दे आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड। टिकट्स आर ऑन सेल एट स्कार्श पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम। टिकट प्राइसेस बढ़ती जाती है एज यू नो, कि जितनी जितनी कॉन्सर्ट की डेट्स पास में आती है उतनी टिकट प्राइसेस बढ़ती जाती है। हाउ एवर यू कैन गेट अ डिस्काउंट बिकॉज वी लव यू, फनेजिया लव्स यू गाइज सो मच। यूज द कोड फनेजिया टू गेट अ 30% डिस्काउंट ऑन विशाल शेखर कॉन्सर्ट टिकट्स एंड इन्जॉय द कॉन्सर्ट एंड टेल मी हाउ इट वॉज, बिकॉज संडे को मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी, बट आप जाइए और मुझे ज़रूर बताइए हाउ यू लाइक द सॉन्ग। तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए फ्रॉम द मैजिकल ड्यूओ विशाल शेखर।

Guys, how are you all doing today? Well, like I promised you, I was going to tell you the story of Sonabai. तो अगर आपको नहीं पता हु सोनाबाई इज, सोनाबाई वॉज बेसिकली दिस लेडी हु वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 14 एंड शी वॉज बोर्न इन 1930. बट वाई इज हर स्टोरी सो यूनिक? ओके, सो I'll tell you why her story was unique. Once you learn the whole story, then you realize, okay? She was born in 1930 in Kenapara, and Sonabai was married at the age of 14 to a much, much older guy, okay? For 10 years, she did not have kids for whatever reason, maybe stress marriage, whatever, we don't know. And honestly, I'm sure even the doctors couldn't figure it out because, we're talking like the 1950s or something. I don't know how advanced medical technology was then. Her husband blamed her for it. क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था? कुछ भी गड़बड़. इनफैक्ट आज के ज़माने भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो पहले तो आप लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं ना. तो शी वॉज ऑलरेडी इनविजिबल बट द वर्स्ट वॉज येट टू कम. तो उन्होंने क्या पता क्या किया उनके हस्बैंड ने, जस्ट टू पनिश पनिश हर. एंड बिकॉज शी कुड नॉट कंसीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, हर हस्बैंड लॉक्ड हर इनसाइड अ विंडोलेस हाउस फॉर 15 ईयर्स. एंड दिस वुमन टर्न्ड हर प्रिजन इन टू हर म्यूजियम. एंड आई विल टेल यू हाउ शी टर्न्ड इट. बट फर्स्ट द सॉन्ग.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
8: So guys, it is time for our second giveaway. Uske baad hum apni story continue karenge. This is Ippy the Hippie and you guys are listening to my show An Evening in Dallas. Evening se to night ho gayi hai. Main abhi bhi yahi pe hoon. I'm gonna be here for another 1 hour all the way till 10 p.m. बट आगे बढ़ने से पहले, ऑल्सो यू गाइज आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM। तो लेट्स डू आवर गिव अवे गाइज। तो हमारा नेक्स्ट गिव अवे है इज फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ। हियर इज योर चांस टू विन ए स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, snacks and all your desi essentials. India Bazaar is located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth, and this is for people living in the Fort Worth area, Kellerhurst, Haslett, South Lake. Agar aap us area ke aas paas hain, then you must try and check out the India Bazaar there. I actually love that store, kyunki jab main pehle aayi thi mujhe aur koi Indian store pata hota ya nahi tha, lekin I definitely knew that. So, this is your chance to win a grocery hamper from India Bazaar. Ye wala segment is super simple. This is called Complete the Lines. So, main ek bahut hi iconic Bollywood dialogue bolungi. Pura nahi, aadha. I'll say like maybe the first 4 words. And all you have to do is call me, tell me your name and then complete the dialogue. Usme se agar aapka ek do word bhi gadbad hota hai to unfortunately we cannot give you. Please make sure you have not won any giveaway in the last 1 month from Fun Asia. We want to give everybody a chance, yeah? It has to be fair. To khele? To main apna page palatti hu kyunki I need some space to write y'all's names down. So here we go. My number is 972-235-5555. And the line is a very, very popular line. कौन सी मूवी का है? ओम शांति ओम का. मैंने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, I tried attempting saying that line in the middle of my show and I did a total fail of it. But I know you guys are better than I am. So let's go. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो blank blank blank blank. Complete the line. And here we go. We have our first caller. Hi. Can you hear me?
9: Hello?
8: Hi, can you hear me?
9: Yes.
8: Okay, first of all, turn the radio down in the background.
9: Oh, okay.
8: Yes.
9: Yeah.
8: Okay, now tell me your name and then tell me the correct answer. Hello? Oh, oops. That was a call drop. Unfortunately, we'll have to go to the next caller. Hi, you're on air. Thank you for calling. Hello.
10: Hello.
8: Hi.
10: Yeah.
8: First of all, aap apna naam bataiye.
10: Yeah, my name is Chandandeep.
8: Chandandeep, okay. Chandandeep, कैन यू कम्प्लीट द डायलॉग. मैं पहले वो फोर वर्ड्स बोलती हूँ, देन यू कैन कम्प्लीट इट. ओके, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो.
10: कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहे तो सारी कायनात उसको मिलाने में आपको इस तरह जुट जाती है.
8: ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, एक दो वर्ड्स गड़बड़ है उसमें, तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गिव यू दैट गिव अवे. पर मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी और कॉल जा रही है. बट दैट वाज अ रियली गुड अटेम्प्ट. थैंक यू फॉर कॉलिंग चंदनदीप. Guys, you need to turn the radio down in the background.
11: हेलो
8: हेलो, आप रेडियो बंद कर देंगे बैकग्राउंड में? मुझे मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा.
11: बंद कर दिया.
8: हाँ बिल्कुल. अब बताइए व्हाट इज द करेक्ट, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
11: रितु शर्मा.
8: रितु जी गो फॉर इट.
11: आप पहला लाइन बोलेंगे?
8: हाँ. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो.
11: पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश करती है.
8: नहीं, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज था, बहुत ही क्लोज था, लेकिन वो नहीं था. साजिश तो है भी नहीं, पर उससे राय में एक वर्ड है. बट थैंक यू फॉर ट्राइंग. कॉल ड्रॉप हो गई लगता है गाइस. आ गई दूसरी कॉल. हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो.
12: Hello. Hello.
8: Hi, can you hear me?
12: Yeah, I can hear you. Can you hear me?
8: Yes. Okay, great. Turn off the radio in the background because that makes it clear.
12: Okay, now can you hear me properly?
8: Yes, perfect. Pehle to apna naam bataiye and then complete the dialogue.
12: My first name is Bharat and last name is Devani.
8: Okay, Gaurav, go for it.
12: Kehte hai agar kisi cheez ko puri.
8: Yes.
12: Sorry, go ahead.
8: नहीं नहीं, आप you can go ahead.
12: कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है.
8: अरे वाह, congratulations, woohoo, you have won the gift hamper from India Bazaar and Fort Worth. ये बड़ा मुश्किल था ये वाला, है ना?
12: Yeah, मतलब वो साजिश था कि कोशिश था, याद नहीं आ रहा था.
8: वही तो ट्रिक होता है, तभी तो हम गिव अवे में ये क्वेश्चंस लाते हैं क्योंकि बड़ा मजा आता है. एक दो वर्ड्स की वजह से वो कई लोगों का छूट जाता है. बट यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड यू हैव वन द गिव अवे. तो गौरव स्टे ऑन द लाइन, आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग इन द बैकग्राउंड एंड देन वी विल आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. सो स्टे ऑन द लाइन. ओके ओके गाइज, आप गाना एंजॉय करिए. आई विल टॉक टू

गाइस, जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट दी आइकॉनिक आइकॉनिक सोनाबाई. एंड ये स्टोरी है तो बहुत ही पुरानी, इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी, लेकिन आई एम श्योर यू विल ऑल बी अमेज्ड बाय इट, बिकॉज व्हेन आई रेड इट आई वाज लाइक वाओ. तो हमने जैसे बोला था, सोनाबाई वाज बोर्न इन 1930 एंड ओनली एट द एज ऑफ 14 शी वाज फोर्स्ड टू मैरी अ मच ओल्डर मैन. And she could not conceive for almost 10 years. So, jab finally unka son hua, her husband was so cruel to her. He kind of trapped her inside the house in one room without any windows, without any doors, and basically tortured her. And wo, because she was trapped in that room for like 10 years, almost 10 or 15 years, she really had nothing to do. So, unhone kya karna shuru kiya? Unhone apne कुएं, उनके रूम के पास ना एक कुआ था जहाँ से वो पानी पीती थी. तो कुएं के पास की जो मिट्टी थी, शी स्टार्टेड डिगिंग अप क्ले, वाइल्ड क्ले फ्रॉम इट. एंड देन वंस शी स्टार्टेड डिगिंग अप दैट वाइल्ड क्ले, शी स्टार्टेड मेकिंग सम टॉयज, क्ले टॉयज फॉर हर सन. लाइक पहले उन्होंने घोड़ा बनाया, फिर कुछ बनाया ऐसे करके. सो द आउटसाइड वर्ल्ड दैट शी वॉज फॉरबिडन टू सी basically reflected from her walls. तो उन्होंने अपनी दीवारों पे she started making these clay sculptures. She decorated it and she just didn't decorate it, she invented it. Then she made like these jali type things on her wall, क्योंकि window तो थी नहीं, jali type, jali भी नहीं थी. So she started drawing up these jalis just so that the air could circulate in the room so she could have some ventilation, थोड़ा fresh air. पता नहीं कहाँ ही से आता फ्रेश एयर. बट शी स्टार्टेड ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ कलर ऑल्सो इन टू इट. तो वो फूल पत्तियों से जो उनको फॉरबिडन था, मे बी हर हस्बैंड वुड प्रोवाइड हर विद इट, जो भी है.

एयर कुड सर्क्युलेट इन द रूम, सो शी कुड हैव सम वेंटिलेशन, थोड़ा फ्रेश एयर, पता नहीं कहाँ ही से आता फ्रेश एयर, बट शी स्टार्टेड ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ कलर ऑल्सो इन टू इट. तो वो फूल पत्तियों से, जो उनको फोबिडन था, मे बी हर हस्बैंड वुड प्रोवाइड हर विद इट, जो भी है, उनसे शी स्टार्टेड ड्रॉइंग ट्रीज, ट्रीज के ऊपर थोड़े थोड़े एनिमल्स. फिर शी ड्रू अ पीकॉक, अ यू नो इन मिड फ्लाइट. शी स्टार्टेड ड्रॉइंग बर्ड्स, गॉड्स, ट्रीज. एंड देन शी टर्न दिस डार्क साइलेंट रूम इन टू अ स्पेस फिल्ड विथ लाइट एंड लाइफ. देन आफ्टर 15 लॉन्ग ईयर्स ऑफ बींग ट्रैप्ड इन दैट वन रूम इन 1968, हर हस्बैंड फाइनली लेट हर आउट. बट शी कंटिन्यूड टू डू हर स्कल्पचर्स एंड हर आर्ट इन दैट रूम. तो आगे की स्टोरी हम इस गाने के बाद सुनेंगे.

तो गाइस, जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट सोना बाई. तो आफ्टर 15 लॉन्ग ईयर्स, व्हेन हर हस्बैंड फाइनली लेट हर आउट, उनके दिल में दया आ गई. तो उन्होंने बोला, अरे चलो, तुम 15 साल कमरे में बंद थी, आई विल फाइनली लेट यू आउट. आई थिंक, आई मीन, द आयरनी ऑफ दैट इज जस्ट फनी. एनीवेज, तो शी केप्ट क्रिएटिंग इवन आफ्टर शी केम आउट, बिकॉज शी एंजॉयड इट. शी इज एन आर्टिस्ट एट हार्ट. तो चाहे वो ट्रैप्ड हैं कमरे में, या चाहे वो उनको खुले आसमान के नीचे हैं, शी केप्ट क्रिएटिंग एंड शी केप्ट मेकिंग हर आर्ट. एंड फॉर 15 मोर ईयर्स, नो बडी रियली डिस्कवर्ड हर आर्ट, बट शी मेड दीज ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड ब्यूटिफुल क्ले स्कल्पचर्स दैट शी स्टक टू द वॉल्स. तो फिर हुआ पता है क्या, इन 1983, 1983, 15 साल बाद करीबन, रिसर्चर्स फ्रॉम भरत भवन वो टूरिंग विलेजेस इन छत्तीसगढ़. उस टाइम पे वो छत्तीसगढ़ में बहुत अनरेस्ट चल रहा था, वो नक्सल वालों का. तो देर वर पीपल हु वर रिसर्चिंग छत्तीसगढ़, बस्तर, ये सारी कम्युनिटीज़ में. समबडी हैड मेंशनड हर नेम कि भाई आप सोनाबाई के घर जाके देखो, वहाँ पे उन्होंने बड़ा सुंदर से बनाया हुआ है. सो दीज रिसर्चर्स फ्रॉम भारत भवन देवल है, चलो ठीक है, इट्स जस्ट अ पासिंग वर्ड, लेट्स गो चेक इट आउट, वाई नॉट. एंड देन दे वॉकड इन टू आर होम एंड दे स्टूड इन साइलेंस. She had created the most beautiful artworks across the walls. Within months, they organized a solo exhibition from her. She received the Tulsi Samman from Madhya Pradesh government, which is basically the highest art honors. And 2 years later, she stood there before the President of India then and received the National Award for Master Craftsperson. She was 53 years old when she was finally recognized. उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 2 decades, हर आर्ट एंड हर स्कल्पचर्स, इट ट्रेवल्ड फार्दर देन हर इमेजिनेशन कुड. ऑल्दो आई थिंक हर इमेजिनेशन फ्लू अक्रॉस स्काइज, बट हर आर्ट, विच आई डोंट थिंक शी वुड हैव इमेजिन्ड, बट इट ट्रेवल्ड फार्दर टू म्यूजियम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इन यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स. इन 2009, a retrospective at the Mingay International Museum in San Diego drew record crowd. So imagine, in 2009, so many years after she had, you know, started creating in San Diego, she got recognized with lots of crowd and so much appreciation. Sona Bai passed away in 2007. Unske baad jaake unka artwork 2009 mein recognize hua. She was around 77 years old when she passed away, but by then, her house that she once had, that one she was a prisoner in, had become a part of India's artistic heritage, and the world she created continues to inspire artists today. So, you know what the moral of the story is? Why don't you tell me the moral of the story? Then I will tell you what I think is the moral of this story for me. You can take whatever meaning from this. So many meanings are there. Lekin, you tell me what you took from this amazing inspirational story.

Guys, it is almost time for me to go. I just have 10 more minutes here with you आज रात को. अभी बस मैं 10 मिनट में घर जाने वाली हूँ. लेकिन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ फ्रॉम 104.9 फन एशिया रेडियो एंड दिस इज माई शो एंड इवनिंग विच इज नाउ करंटली नाइट इन डैलस. दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू सफी एंड रफी हु हैव रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग.

Pichaka-dum-dum.

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao ki Exclusive media partner Panacea
1: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up Don't miss a single thrilling moment Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
2: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
4: The radio, it's a mindset of entertainment.
5: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our rivals.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
2: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: favorite music on your favorite radio.
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: help me.
1: Kaash,
0: please help me.
2: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब?
3: हाँ,
2: पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो। Right back.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
2: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
4: आर यू गेटिंग द बेस्ट वैल्यू ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस और annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
6: I'm Rahat Fateh Ali Khan, and you are listening to Radio Fun Asia.

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: Uh-oh.

तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ में

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

The Heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Funasia.

0: IT is the spice of our station.
1: Yeah, 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: तुझको याद है बता भूली बिसरी वो जगह उसमें लिपटी वो सुबह उस

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, FunAsia.
2: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into FunAsia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: ना कहना कि तेरे मेरे बीच में क्या है,
1: क्या है
2: तुम्हें पता तो है क्या है
0: कि तेरे मेरे बीच में क्या है
1: बातें

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lights, mic, Bollywood, Fun-Asia! Fun-Asia!
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: Now, sir, or price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
4: Main heroine hoon.
5: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
6: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Now just imagine. एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: See? You're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

I do have the world news coming up after Massacre from Alpha.

0: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
1: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
2: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
3: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
0: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
0: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
4: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूं तो कहां से लूं?
6: इट्स लॉसन।
5: किससे बात करूं, सारी जानकारी कौन देगा?
6: इट्स लॉसन।
5: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
7: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
0: Front page का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
0: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
0: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।

0: It's 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
6: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
8: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
9: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है. इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंखस्थापना महोत्सव में. एक भव्य 11 एकर कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट. शाम को और भी खास बनाएंगे, गो पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट. मायर्स पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड.
10: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: A.R. Rahman and Madhushri in that track, picturized on Rani Mukherjee and Abhishek Bachchan from the movie Yuva.
1: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है.
2: हाँ, देख लेंगे.
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
2: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: It's Lawson.
4: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
5: It's Lawson.
4: Daddy, what is the law?
6: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
7: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में दोसा.
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
9: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
8: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 और कस्टर जंक्शन.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
8: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
16: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
17: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: that, ladies and gentlemen, is my show for today. I'll see y'all at 7 o'clock tomorrow morning.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
1: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: इट्स लॉसन।
7: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
8: इट्स लॉसन।
7: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
9: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंखस्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेम्पल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। मायर्स पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
16: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू और अब तक आपका साथ दे रही थी शबनम मुडगिल एंड शी ब्रिंग्स एन अमेजिंग शो एज ऑलवेज. आई नीड टू थैंक हर फॉर अ ब्यूटिफुल एनर्जेटिक बिगनिंग ऑफ द डे दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है इसमें कोई शक नहीं है और आई एम वेरी वेरी बैड एट दैट आई कैन टेल यू. इसीलिए एक दिल से ना मतलब शुक्रिया कहना चाहती हूँ शबनम जी फॉर यू नो एवरी डे वेकिंग अप दैट अर्ली फाइंड ऑल द न्यूज दैट शी वॉन्ट्स टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू ए वेल राउंडेड शो दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और दिल से ही कह रही हूँ कि भाई आपका भी कमाल है कि हर रोज आप जो हमारे साथ जुड़ते हैं it is what makes our shows very very special. So thank you for your contributions here. This is Gapshap Gali with me too.

9th जुलाई 10:12 हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और ट्रिपल डिजिट का जो ये चल रहा है सिलसिला, ये चलता रहेगा और रेन चांसेस हमारे कुछ वीकेंड पे वापस आने वाले हैं, जिसके बारे में थोड़े और विस्तार से हम नेक्स्ट सेगमेंट में बताएंगे। फिलहाल तो ये कि भाई एक अजीब सा सुकून इस दिल को मिलता है, जरा गौर फरमाएं, एक अजीब सा सुकून इस दिल को मिलता है, हर बार लगता है जैसे जन्नत का फूल खिलता है। सोचा था इस हसीन दुनिया में बस खोए रहें, सोचा था इस हसीन दुनिया में बस खोए से रहें, पर इस जालिम अलार्म को और कितनी बार स्नूज पे रखें, ये बताइए आप हमें। इसीलिए हूँ यहाँ पर और पूरे जोश को मैं अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मदद चाहिए भाई थोड़ी सी। दिस इज गपशप गली विथ मीठू।

0: इस जालिम दुनिया से बचें आप, और जालिम दुनिया से बचने के लिए ना अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर रखें, अपने आंखों के सामने अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखें कि आप किसका साथ देना चाहते हैं, किसका नहीं देना चाहते हैं, किसके लिए स्टैंड देना चाहते हैं, किसके लिए नहीं लेना चाहते, किन चीज कौन सी चीज़ें आपके लिए गवारा होंगी, और बिल्कुल जो ना गवारा होंगी उसके लिए भी दिमाग में वो विजन रखें, क्लैरिटी रखें अपने दिमाग में। और बाकी रही बात आंखों की, उसके लिए भी ख्याल रखें भाई कि रास्ता आपको साफ दिखता जाए, मोस्ट फिलोसोफिकली एंड एक्चुअली इन रियलिटी एज वेल। इसीलिए तो विजनरी आई का रास्ता मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेसिक के ना कई सारे रिकमेंडेशंस लोगों को मिलते हैं फ्रॉम आई डॉक्टर, बट डू यू नो लेसिक के अलावा भी देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर विजन करेक्शन, और इनके बारे में आपको पता चल सकता है डॉक्टर शहजाद बाटली वाला, ए फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई, एंड दे आर इन प्लेनो। लेडीज एंड जेंटलमैन, lasik-plano.com इज द वेबसाइट टू रिमेंबर, क्योंकि हर एज में हमारी एक अलग ज़रूरत होती है आंखों की, और उनको मीट कर सकते हैं विजनरी आई केयर। यू नीड टू रिमेंबर कि भाई एक जो 20s या 30s का जो एज होता है, एंड देन 40s का, एंड देन गोइंग इन टू द 50s, 60s एंड 70s एंड 80s, ऑल दोज एज ग्रुप्स हैव डिफरेंट इशूज, यू नो, कि कभी तो आपको शायद ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज से छुटकारा पाना है, तो कई लोगों के लिए होगा कि भाई नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि भाई कैटरैक्ट सर्जरी की जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल की जा सकती है।
1: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री एस्टिमेट्स। Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Umar Khwaja.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: मामू देखो क्या हो गया।
10: ओ क्या हो गया?
9: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
10: ओए जर्मन का कमाल है।
9: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
10: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
11: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे? और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

फिल्म का नाम लैला मजनू. ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. गोइंग टू टेक यू टू अ सॉन्ग व्हिच इज टाइटल्ड लैला मजनू. ये कहानी कहाँ कभी पूरी पुरानी हो सकती है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

कुछ ऑफ बीट गाने लगाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे. होपफुली यू आर हैविंग ए गुड टाइम विथ मी हियर. दिस इज गपशप गली विथ मीटू. और यहाँ पे वो गली पकड़ने वाले हैं जो मौसम का हाल बताता है. और मौसम वो जो डैलस का तो कभी होता ही नहीं है. गर्मी तो कभी पड़ती ही नहीं है हमारे. राइट, द हीट कंटिन्यूज विथ टेम्परेचर्स इन द ट्रिपल डिजिट्स एंड वी आर गोइंग टू फील लाइक टेम्परेचर्स अ फ्यू डिग्रीज वार्मर थैंक्स टू दैट हीट इंडेक्स, दैट मॉइस्चर इन द क्लाइमेट दैट मेक्स इट डू इट, यू नो. और ट्रिपल डिजिट का ये जो हमारा सिलसिला है ये कल भी होने वाला है, विद टेम्परेचर्स फॉलिंग बाय जस्ट ए डिग्री ऑन सैटरडे. और सैटरडे जो है और संडे जो है आप आउटडोर्स के लिए आप सोच सकते हो, कंसिडरिंग कि हम ट्रिपल डिजिट्स हिट कर चुके हैं, तो कुछ डिग्री कम होने का मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. और इसीलिए संडे वुड बी अ गुड डे, ऑल्दो देर आर चांसेस ऑफ स्कैटर्ड स्टॉर्म्स ऑन संडे which you must be aware of. Chance of storm continues into early next week as well, and temperatures cool down to the lower 90s, ladies and gentlemen, when we start our next work week. Monday ko aap bahut optimistically nikal sakte ho, kyunki ji haan, temperatures are going to be much lower. And then again, वो heat वापस आएगा और वो triple digit में हम पहुँचेंगे. लेकिन जब तक वो 92 जो मंडे को हमें मिलने वाला है उसका एक possibility हमें दिख रहा है, उसी में यार दिल जिगर जान सब खुश है यार, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है. You are listening to Fanisha Radio 104.9 FM. इसी जो ये कुछ हटके हम जो लगा रहे थे इसी सिलसिले में ये एक और गाना, लेट्स ब्रिंग इट टू यू. इट इज फ्रॉम द फिल्म मिर्जिया, लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: और इतिहास गवाह है कि अगर यू नो आप अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, वक्त पर आप अपने आप को हर चीज़ से बचाते हैं, तो जी हाँ, यू विल हैव ए हेल्दी लाइफ। एंड वो क्या कहावत है, इस किचन टाइम सेव्स नाइन, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ऑफर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम्स दैट दे हैव अंडर वन रूफ, आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। याद रखिएगा, इट इज़ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, लेडीज एंड जेंटलमैन। पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम इज़ द वेबसाइट, एंड देयर अपॉइंटमेंट्स तसल्ली से देखते हैं। ये हर बार कहती हूँ, आज भी कहना भूलूंगी नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम डॉक्टर्स को देखने जाते हैं, यानी कि अपने आप को दिखाने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, राइट? एनजाइटी केयर, फाइब्रोस्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मोर, दैट इज अवेलेबल एट पैशन हेल्थ। आप अपने अपॉइंटमेंट्स आज ही स्केड्यूल करें उनके साथ। 214-666-6259 इज द नंबर टू कॉल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहीं बने रहिएगा, चाहिए नहीं।
1: I've been researching retirement planning.
2: Oh, really? Where?
1: Google, YouTube, a guy on TikTok.
2: Or you could just talk to WealthTactic.
1: What's the difference?
2: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
3: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: Is sheher ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
7: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता
13: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
16: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
15: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment.
17: Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
18: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
17: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

The few movies that Shahid Kapoor and Kareena Kapoor acted in together, जिनमें से सबसे popular है जब We Met. लेकिन ये जब मिले थे उस दौरान जब ये dating चल रही थी इनकी, इस film के खत्म होते होते तो इनका breakup हो गया था as we all know. लेकिन ये मैं ले जाने वाली हूँ यहाँ से 2007 से. I'm going to take you back few years क्योंकि 2004 में एक film बनना शुरू हुई जो शाहिद कपूर और करीना कपूर के उस phase of life when they were actively dating. And इस फिल्म का ये हुआ था प्रॉब्लम कि भाई इतने मैसिव फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरा द अदर फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विच रिलीज ऑन दिस डे लेडीज एंड जेंटलमैन 2010 की बात है और ये है गपशप गली विद मी टू जहां पे इस वक्त मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री. देयरफॉर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिल्म दैट रिलीज ऑन दिस डे इन 2010 विच स्टार्ट द two amazing actors from the industry, Shahid Kapoor and Kareena Kapoor. तो कहाँ थी मैं? हाँ, मैं आपको बता रही थी कि कुछ मैसिव फाइनेंशियल इश्यूज हुआ था, कुछ प्रोडक्शन डीलेज हुए थे और 2004 में जो फिल्म शुरू हुई थी शाहिद कपूर और करीना कपूर की, ये 6 साल इट वाज ऑन इट्स शेल्फ बाय द टाइम इट फाइनली हिट द थिएटर्स ऑन दिस डे इन 2010. ये जो लीड पेयर है हमारी ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी थी, करीना कपूर की जब वी मेट आ चुकी थी और बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी. तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये फिल्म जब जिसका एक ऑब्वियसली एक जो है म्यूजिक का ट्रेंड शिफ्ट कर चुका था, द लुक ऑफ द फिल्म फेल्ट हैवीली डेटेड एंड यस इट ऑल फेल्ट टू ओल्ड टू वर्क एट द बॉक्स ऑफिस दैट एंड इट डिडंट. फिल्म का नाम है मिलेंगे मिलेंगे.

that was Milenge Milenge title track. और ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2010 और ये हमारे बॉलीवुड स्पेस में. तो हॉलीवुड स्पेस की बात की जाए क्योंकि हॉलीवुड स्पेस में भी आज के दिन एक मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट रिलीज हुआ था एंड इट वॉज अ गैम्बल दैट ब्यूटिफुली पेड ऑफ क्योंकि July 9, 2003 के पहले हॉलीवुड थॉट पायरेट मूवीज वर डेड वेट और ए फिल्म बेस्ड ऑन थीम पार्क राइड साउंडेड एब्सर्ड एंड ये सारे उनको उनके इमेजिनेशन के बाहर थे. एंड ये जब फिल्म रिलीज हुई जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल ऑन दिस डे इन 2003 तो सबके दिमाग घूम गए और सब फिल्म इंडस्ट्री ने मेरे ख्याल से इमेजिन किया होगा कि उनकी भी एक अपनी ऐसी फिल्म बने. अब आमिर खान ने ये कई दफे कहा है कि उनकी फिल्म इससे इंस्पायर्ड नहीं थी, इट्स अ पायरेट मूवी ऑफ इट्स ओन, लेकिन हमारी जो ये होम ग्रोन स्पेक्टिकल थी इट कुडंट डू एनीथिंग एट द बॉक्स ऑफिस एंड आई शुड बी लाफिंग अबाउट इट बिकॉज अटेम्प्ट वॉज मेड इट फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन जी हाँ, यश राज फिल्म्स का ये मैसिव स्टार स्टार्टेड एक्शन एडवेंचर थग्स ऑफ हिंदुस्तान विच केम इन 2018 स्टारिंग नन अदर देन आमिर खान एंड अमिताभ बच्चन टुगेदर दैट इटसेल्फ हेल्प द फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और ये सारे के कारण जो रिव्यूज फिर लोगों ने दिया, फीडबैक्स जनता से सुना, उस सब के कारण ये फिल्म एक डिजास्ट्रस फ्लॉप थी एट द बॉक्स ऑफिस. And that's Thugs of Hindustan, ladies and gentlemen, Pirate of Caribbeans, हालांकि आज के दिन रिलीज हुई थी बट हमारी अपनी जो पायरेट फिल्म थी दैट वॉज Thugs of Hindustan. Music was amazing though.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
3: हाँ, देख लेंगे।
2: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
3: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
4: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections, now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
11: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
12: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
11: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
13: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
14: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
15: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
16: Tarikh par tarikh, tarikh par tarikh.
0: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
15: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
17: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
18: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
17: Kaise?
18: Page 3 eatery?
17: No, not another restaurant again.
18: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
17: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
0: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
19: Hey, tumne kabhi insurance liya?
20: Liya.
19: Kabhi policy samajh bhi aaya?
20: Nahi aaya.
19: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
21: Visit www.sanadainc.com today.

0: भूल गए?
1: जानी मेरा नाम,
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: And this is Nostalgia Express that you all are on with me right here on Funny Show Radio 104.9 FM. ये segment और अगला segment पूरा nostalgia के साथ related होगा. तो अगर आप connect करें तो I need to hear from you 972-235-5555 क्योंकि अगली आवाज जो है आपको guess करनी पड़ेगी और उनका आज birth anniversary है and that is why I want all of us to remember her very fondly क्योंकि उनकी आवाज उनकी पहचान थी और है और वही आप लोगों से जानना चाहती हूँ. इन अ बिट आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज द गिव अवे विद दैट क्वेश्चन दैट आई जस्ट आस्क्ड यू. लेकिन उससे पहले ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बिजनेस है जिसकी पहचान उनका काम है एंड दे हैव बीन डूइंग दिस इमेंस वर्क इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड टैक्स सर्विसेज फॉर द डायनामिक बिजनेस ओनर्स. तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एजी फिनटैक्स तक जरूर जाएं, उनसे बात करें एंड फिगर आउट how they can help you. And it is for all individual and small business owners that they can help with strategic tax planning and bookkeeping experience that they have of decades. They can certainly help you. Once again, agfintax.com inki website hai, 469-942-9888 inka number hai. And if you are a business owner earning more than 200,000 annually, to aapke liye inhone ek seminar arrange kiya hai. And this is absolutely free. Join AG Fintax for this free tax planning seminar aur aap discover kar sakte hain wo legal strategies jo aapke tax burden ko thoda kam kar sakti hai smart planning ke zariye. July 10th ko hai, yani ki kal hai ye, tomorrow Friday. It starts at 6 PM at Fun Pizza Kitchen in Frisco. और ये जानना जरूरी है कि आपका रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. agfintax.funasia.net पे जाकर आप जरूर रजिस्टर कर लें फॉर दिस फ्री सेमिनार दैट यू विल गेट टू अटेंड ब्रॉट यू बाय एजी फिनटैक्स. एंड गेस व्हाट, अटेंडीज जो रजिस्टर करने वाले हैं फॉर द सेमिनार, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं तो जरूर कर लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट. आपको स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा. सीट्स लिमिटेड हैं तो जल्द से जल्द अपने सीट्स रिजर्व कर लें बाय विजिटिंग द वेबसाइट agfintax.funasia.net. कल 6 बजे से शुरू होने वाला है एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग यू ऑल बिफोर. अगली आवाज जो मैं प्ले करने वाली हूँ, इट इज विथ ए ब्यूटिफुल क्लासिक फॉर एवर एवरग्रीन गाना जो मैं आपके आपके लिए लगाऊंगी उसके बाद. लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. वो इंट्रोडक्शन किन की आवाज में है उनको याद करना चाहते हैं. इट इज़ हर बर्थ एनिवर्सरी और जैसे कि मैंने कहा ना, इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है. सो 972-235-5555, टेल मी हु इज दिस वॉइस. इफ यू कैन टेल मी वेरी वेरी क्विकली तो फिर आपको मिलता है फ्रॉम नियॉन कैक्टस दैट $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन, लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, वही मेक्सिकन प्लेस जो कि एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस लेकर आता है. आर यू रेडी टू लिसन टू द वॉइस? हियर वी गो.
1: शायद आपको पता ना हो कि लता जी प्रोड्यूसर हैं और कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं, हिंदी भी और मराठी भी. और वो मजा ले ले के कहती हैं कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके दिमाग में डाल दो कि भैया तू प्रोड्यूसर बन जा, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा. क्योंकि यश चोपड़ा जैसे खुशकिस्मत तो बहुत कम होते हैं ना.

The amazing stalwarts who were born on this day. और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया. मैंने आपसे एक सवाल कहा था कि भाई ये गाना शुरू होने के पहले एक आवाज़ मैंने आपको सुनवाई थी जो अपने आप में एक पहचान है. इनकी आवाज़ कोई नहीं भूल सकता जिन्होंने सुना है उस दौर में जबकि ये टॉक शो होस्ट हुआ करती थी. शी यूज़ टू बी एन एक्ट्रेस एज वेल और फिर यूट्यूब पे भी उन्होंने अपना शो चलाया था. इंडियन टेलीविजन की बहुत ही बड़ा नाम. फूल खिले गुलशन गुलशन, दैट्स द शो दैट शी यूज टू ब्रिंग बिटवीन आई बिलीव अर्ली 1970s टू 1993 ऑन दूरदर्शन. और डिफरेंट टीवी पर्सनालिटीज़ के साथ वो इंटरव्यू करती थी, सिनेमा पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरव्यू करती थी. एंड दैट्स द वॉइस तबस्सुम जी जिनको आज हम याद करना चाहते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे. एंड इट वॉज माई प्लेजर टू प्ले दैट वॉइस फॉर ऑल ऑफ यू. सुमित साहब आप जीत चुके हैं फ्रॉम नियॉन कैक्टस. थैंक यू एवरीबडी फॉर गिविंग मी अ कॉल ऑन दिस वन. एंड इट इज ग्रैंड टू नो कि सबको उनकी आवाज कितनी बेहतरीन तरीके से याद है. टॉकिंग अबाउट स्टॉलवर्स जिनका आज बर्थडे है, संजीव कुमार साहब, इट इज हिज बर्थ एनिवर्सरी टूडे. नीड आई से मोर अबाउट द एक्टर, द आर्टिस्ट दैट ही वॉज? लेजेंड.

संजीव कुमार्स बर्थ एनिवर्सरी टुडे, और आज ये सेलिब्रेट किए बिना हम कैसे ही मान सकते थे, राइट? और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ना, मेरा एक एक अपना फिलॉसफी है कि जो अगर आप ऐसे स्टॉलवर्ट्स के साथ अपने बर्थडे शेयर करते हो ना, तो उनकी ल्यूमिनोसिटी जो है ना, वो आपकी अपनी है. यू आर शेयरिंग दैट ल्यूमिनोसिटी विद देम. आप में भी कोई खास बात होगी, या तो आपने पहचान लिया है या तो अभी भी पहचानना बाकी है. तो जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे लिसनर्स में जो भी हैं जिन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, बाय द वे अगर करते तो आपके लिए भी एक गाना लगाते हैं हम. लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी बेस्ट विशेस फॉर यू ऑलवेज. एंड दैट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट बर्थडे सेगमेंट. एक और स्पिल ओवर होने वाला है इन द नेक्स्ट सेगमेंट अलॉन्ग विद दिस नॉस्टैल्जिक एक्सप्रेस. नॉस्टैल्जिक

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
3: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: Pritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
12: Wait, itna sab aur price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega. Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: Aaja meri gaadi mein baith ja.
4: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
14: Wo thoda overheating tha.
4: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो, एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
19: नाइन्थ ऑफ जुलाई और घड़ी मिला लीजिए, आज की तारीख है 35 मिनट्स, आज का वक्त है 35 मिनट्स पास्ट 11। लेडीज एंड जेंटलमैन, तारीख के साथ वक्त बता दिया, तो वक्त के साथ आज के दिन का तापमान भी बता दिया जाए आप लोगों को। इट इज़ गोइंग टू बी 101 degrees फॉर आज टुडे, और इसका जो फील है, जो हीट इंडेक्स नामक जो चीज़ है वो हमें फील करवाएगी 104 के करीब, एंड इट इज़ गोइंग टू बी दैट हॉट लेडीज एंड जेंटलमैन। कल थोड़ा सा 1-8 degree कम होगा एंड हमारा टेम्परेचर डबल डिजिट में वापस जाएगा, ऑल्दो फ्यू एरियाज मे स्टिल बी एट द ट्रिपल डिजिट फैक्टर। और इसके अलावा कल थोड़ा सा ज्यादा ब्रीजी होगा एज कम्पेयर टू टुडे, लेकिन गर्मी कल भी रहेगी, गर्मी आज भी होगी। और सैटरडे और संडे को धीरे धीरे जो तापमान थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि संडे को बारिश के चांसेस हैं, तो संडे को थोड़ा अच्छा खासा कम मिलेगा, ऑलमोस्ट लाइक 5 degrees दैट विल यू नो बी लोअर ऑन टेम्परेचर देयर। तो संडे का मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ स्पॉटी शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स के चांसेस हैं, प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दैट। मंडे इज गोइंग टू हैव अनदर चांस ऑफ रेन एंड थंडरस्टॉर्म एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट विल ब्रिंग डाउन आर टेम्परेचर टू लोअर 90s। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस खुशी में मैं समा नहीं पा रही हूँ अपना, ये जो खुशी ना अंदर समा नहीं रहा है मेरा, इसीलिए मैंने सोचा आई विल हैव टू स्पिल द वेदर अपडेट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर। एंड यू नो व्हाट, इन द लास्ट सेगमेंट वी वर प्लेइंग सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑफ आर स्टॉलवर्ट्स इन द सिनेमा इंडस्ट्री, और ऐसे में मैंने ये भी कहा कि आप में से अगर कोई अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ना, मेरी ये फिलोसफी है कि जो भी स्टॉलवर्ट्स या सेलिब्रिटीज का जो बर्थडे होता है, आप उनकी ना कुछ तो आप उनका कुछ उनकी कुछ चमक शेयर डेफिनेटली करते हो इफ यू आर बॉर्न ऑन द सेम डे एज ए ग्रैंड ग्रेट सेलिब्रिटी। तो यहां पर मुझे फिर यशस्वी का कॉल आता है, तो थैंक यू सो मच यशस्वी फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर ब्यूटिफुल गॉर्जियस डे टूडे। इट इज हर बर्थडे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सब मिलकर हैप्पी बर्थडे बोले उनको, विशिंग हर ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अर्ज किया है ज़रा यू नो गौर फरमाएं, हर एक दिन आपका आसमान से भी बुलंद हो, हर एक दिन आपका आसमान से भी बुलंद हो, जिंदगी का हर रास्ता खुशियों से आबाद हो, दुआएं हैं कि यशस्वी नाम है जैसे आपका, दुआएं हैं कि यशस्वी नाम है जैसा आपका, कामयाबी का हर रास्ता हमेशा आपके साथ हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया एंड थैंक यू रियली फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर वंडरफुल डे टुडे। यशस्वी, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड टू अनुराधा श्री राम हु इज द फीमेल लीड इन दिस नेक्स्ट ट्रैक। गाती हैं क्या आप यशस्वी?

A gem of a song, and that brings me to the treasure chest of Shri Krishna Jewelers. और Shri Krishna Jewelers जो कि 1967 से आए हैं और इनके जो चाहने वाले हैं, यानी कि इनके designs के जो चाहने वाले हैं, वो they are ardent followers and fans of their jewelry collection. और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी जाकर देखें. If you haven't gone there already, do make a visit. Their location, their new location is at 13145 Suite 220. Main Street in Frisco, that you must go and check out for those beautiful classic gold designs. Ya phir agar kuch diamond mein aapko dekhna ho, ya unki jo intricate kundan sets hain jo aap check out kar sakte ho, ya phir stunning polki collection that they have. Make sure that you make a stop at their new Frisco location and let us know how you like the place. It's Shri Krishna Jewelers, ladies and gentlemen. Thank you once again for tuning in. Hum Nostalgia Express pe sawar hain. Lekin ye jo hum gana agla play karne wale, it's very much this century song, and the turn of the chapter is quite literal in this movie and done very beautifully by Tota Roy Choudhury. ये वो एक्टर हैं जो चंदन चैटर्जी का कैरेक्टर प्ले करते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. इट इज़ हिज बर्थडे टुडे. ए स्टॉलवर्ट इन बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री, और इनको कौन नहीं जानता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में, तोता रॉय चौधरी. एंड ही हैज़ डन फ्यू हिंदी मूवीज एज वेल, जिनमें से एक रॉकी और रानी की वो कहानी, जो कि इतनी आइकॉनिक ये कैरेक्टर वो लेकर आए, जहाँ पर यू नो हिज कैरेक्टर्स you know, mastery of the art and the iconic dance sequence, particularly in the song that I'm going to just play, which was alongside Ranveer Singh, was just absolutely mind-blowing, ladies and gentlemen. Aur ye character jo tha, it faces that toxic societal prejudice. Aur wo kyunki kathak sikhate the aur kathak karte the, classical dance form karte the, to ek jo femininity ke saath associated hai, uska wo pura barrier todte hue is फिल्म में तोता रॉय चौधरी का कैरेक्टर चंदन चैटर्जी. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एज़ वेल.

विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन थी, ये था ये गाना। और विशाल शेखर वो जो 30 इयर्स से अभी भी रेलिवेंट उन्होंने अपने आप को बना के रखा है, बिकॉज वो नब्स पहचानते हैं द लिसनर्स दैट आर लिसनिंग टू द बॉलीवुड म्यूजिक एंड बियॉन्ड, और वो जानते हैं कि क्या पसंद करेंगे और किस तरह से इवॉल्व होना होता है। और इसे कहते हैं कि लंबी रेस के घोड़े ये जो है विशाल और शेखर। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय देयर स्टेज परफॉर्मेंस। बहुत सारी आग लेकर आते हैं ये अपने परफॉर्मेंसेस में, स्टेज परफॉर्मेंसेस में, लाइव परफॉर्मेंसेस में, दैट्स व्हाट आई हियर। विशाल और शेखर दोनों की अपनी काबिलियत एक अलग अलग लेवल पे है। विशाल दादलानी जो कि ट्रेन म्यूजिशियन नहीं है, जस्ट FYI लेडीज एंड जेंटलमैन, हालांकि शेखर रवजियानी जो है इज ए क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियन, लेकिन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, इट इज डेडली। दोनों एक अलग वाइब लेकर आते हैं, दैट मेक्स देम सो रेलिवेंट close to 30 years later now that we are listening to their music. और इतनी सारी तारीफ मैं कर रही हूँ कि जिसने भी टिकट नहीं खरीदे हैं ना, ज़रूर खरीद लें। You will regret when you find out from your friends who go to watch the concert कि कितना शानदार कॉन्सर्ट था। एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सीरियसली, क्योंकि विशाल शेखर के गाने हम अक्सर लगाते हैं। ऐसा कोई शो नहीं होता होगा जिसमें विशाल शेखर के गाने नहीं प्ले होते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, सॉफ्ट म्यूजिक हो, टू बिल्कुल दमदार, जैसे कि ये। कैश पटेल प्रोडक्शंस .com इज द वेबसाइट टू गो एंड बाई योर टिकट्स राइट अवे, एंड फनी शेक कोड जरूर यूज कीजिएगा इफ यू वॉन्ट दैट 30% डिस्काउंट। July 12th at Curtis Culver Center. Milte?

Once again, ladies and gentlemen, it is Gapshup Gali with me too. And this आखरी segment dedicated है FIFA को. FIFA fever segment, ladies and gentlemen. 3 बजे के बाद अगर आज कोई available नहीं है या meetings में absent minded है, तो आप समझ जाएगा किस लिए. Yes, clear your schedules for France versus Morocco. The quarterfinals begin today, and this is a massive, highly anticipated 2022 semi-final pair that competed 4 years back. Thodi si aapki memory refresh ki jaye. Morocco had literally created history by becoming the first ever African nation to step foot into a World Cup semi-final, and that happened in 2022. Aur unhone jo hai Giants ko knockout karke wo semi-final tak pahunche the. Spain aur Portugal ko hara ke they had reached the semi-final to compete with France, ladies and gentlemen. Lekin the then reigning चैंपियंस फ्रांस ने उनकी उस ड्रीम सिंड्रेला रन को 2-0 से खत्म कर दिया था. और अब एग्जैक्टली 4 साल के बाद ये दोनों, यानी कि फ्रांस और मोरक्को, वापस एक क्वार्टर फाइनल स्टेज पे खड़े हैं. मोरक्को हैज कैरीड दैट हार्ट ब्रेक प्रोबेबली सिंस कतर टाइम्स, एंड यू कैन बेट कि इस बार वो फ्रांस को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं. दे आर गोइंग टू गिव देम अ बिग स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन लाइक नेवर बिफोर. एंड दिस इजंट जस्ट अ टैक्टिकल बैटल ऑन द pitch anymore. This is straight up absolute revenge time for Team Morocco. France versus Morocco game is scheduled to begin at 3 p.m. in Boston's Gillette Stadium, ladies and gentlemen. Dekhte hain kisme kitna dam hai. Let's roll this next song right here on Gapshup Gali with me too on Funny Chat Radio 104.9 FM.

0: मैं खत्म तो खेल
1: खेल तो अभी भी कंटिन्यू करने वाला है. एंड टुडे द मैच बिटवीन फ्रांस वर्सेस मोरक्को एट 3 PM, ये इस चीज के लिए हम सब तैयार हैं. क्वार्टर फाइनल्स हैव बिगन. कल होल्ड योर ब्रेथ फॉर दिस 40-year-old स्कोर टू बी सेटल बिटवीन स्पेन एंड बेल्जियम. लेडीज एंड जेंटलमैन, और फिर सैटरडे को पहला एवर टूर्नामेंट मीटिंग जो कि होने वाला है नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच. एंड ऑन संडे जुलाई 12th डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना विल बी टेकिंग ऑन स्विट्जरलैंड इन द लास्ट डे ऑफ क्वार्टर फाइनल्स. एंड आग लगी हुई है, आग. सीरियसली, फीफा वर्ल्ड कप 2026. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है।

आज अगर कोई कोई पर्टिकुलर काम करने को निकले ना, तो ऐसा चार्ज अप गाना सुनने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत सारी ताकत और जोश मिला होगा। और इसी जोश के साथ अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, अपना पहला घर खरीदने का सोच रहे हो, तो द प्रोसेस शुड बी स्ट्रेस फ्री, एब्सोल्यूटली स्ट्रेस फ्री। सारा जोश ठंडा पड़ जाता है अगर वो प्रोसेस सही नहीं हो, राइट? तो इसीलिए ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ जुड़े मिस्टर हुसैन पंचवानी एंड हिज टीम आर एवर रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू, चाहे वो रीफाइनेंस की बात हो, जैसे कि मैंने कहा घर खरीदने की बात हो, या फिर और कोई फाइनेंशियल नीड हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग

हो राइट right? तो इसीलिए ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ जुड़े मिस्टर हुसैन पंचवानी एंड हिज टीम आर एवर रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू, चाहे वो रीफाइनेंसिंग की बात हो, जैसे कि मैंने कहा घर खरीदने की बात हो, या फिर और कोई फाइनेंशियल नीड हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लोन्स एंड एवरीथिंग, यू शुड गेट इन टच विद देम. हुसैन पंचवानी साहब मेरे शो पे 10:30 मंडेज को आते हैं इन द मॉर्निंग्स एंड ही गिव्स यू टिप्स एंड एडवाइसेस विच आर रियली वर्थ लिसनिंग इन टू. तो अगली बार जरूर ट्यून इन कीजिएगा, और फिलहाल तो ये कीजिएगा कि आप dreamhomemortgage.com पे जाइएगा और उनसे कॉन्टैक्ट बनाइए 9722455626. स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विथ कॉन्फिडेंस टूडे इटसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना तैयारी की जरूरत होती है. ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा और अगले हफ्ते खरीद लिया. इट नीड्स अ प्रॉपर प्लानिंग एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट राइट. एंड द प्लानिंग फॉर ऑल द 8 यू नो टीम मेंबर्स ऑफ the 8 teams of the FIFA quarterfinals, they are getting ready to play. Aaj France versus Morocco hoga. After 96 grueling games, the World Cup is officially down to the elite 8. Aur is baar ke quarterfinal lineup ekdam mind-blowing ek mix-up hai between traditional powers aur rising giants ka. Think about it, out of the remaining 8 teams, 4 are former champions. अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, करेक्ट. और बाकी के जो 4 हैं, दे आर फाइटिंग टू बिकम ओनली द सेकंड न्यू वर्ल्ड कप विनर ऑफ दिस सेंचुरी सिंस स्पेन डिड इट बैक इन 2010. तो चलेगा पता हमको इसके बारे में आज से शुरू होकर 12th जुलाई जब अर्जेंटीना खेलने वाली है. द रेनिंग चैंपियंस आर गोइंग टू प्ले दिस संडे विथ स्विट्जरलैंड, अगेंस्ट स्विट्जरलैंड आई शुड से. और एज फार एज अर्जेंटीना इज कंसर्न्ड, they are actually in a lot of controversy outside the game as well. According to reports, the FBI is now actively investigating the Argentine Football Association for possible fraud and money laundering right here in the US. Aur iske bare mein details kal share karu aap logo ke saath, kyunki mere abhi jaane ka waqt ho raha hai. To ek gana lagate hain, wo intro banaye rakhe, aur is bare mein janna ho to you will find it online. बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
1: इंट्रोड्यूसिंग लूमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी आईएसडी अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लूमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को. कॉल 972-666-1181. मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ.
2: यू आर अर्निंग वेल, बट आर यू पेइंग मोर टैक्सेस देन यू नीड टू? इफ यू आर अ बिजनेस ओनर earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG Fintax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG Fintax. Plan smart, save more.
3: Documents ya parcel bhejni hai?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
1: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
13: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

0: Get ready to welcome Simi on the airwaves of Fun Asia Radio. Afternoon Addash Simi ke saath, enjoy karo. Kal subah fir wapas aati hu with Gapshap Gali with me too. Ready to sign off for today.
1: Zindagi ek rangmanch hai.
2: Aur ghar dhoondna sirf interval. Asli climax to tab hai jab closing smooth ho, paperwork clear ho aur chabi aapke haath mein ho. Parda girne se pehle First United Texas title. Hum pakka karte hain ki ghar sach mein aapka ho, har kadam aapke saath.
3: Call 972-897-1530. FirstUnitedTexasTitle.com.
4: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
5: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
4: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
5: डिफरेंट स्कूल का

A very good afternoon to my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी with your favorite show, The Afternoon Adda. आपका और मेरा साथ रहने वाला है 12:30 से 2:30 बजे तक. तो मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, कुछ giveaways भी होंगे. वैसे आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं. आज है Throwback Thursday और Throwback Thursday का जो टॉपिक है वो है देसी पेरेंट्स के रेगुलर डायलॉग्स. ये सुनते ही आपके दिमाग में वो दो चेहरे तो जरूर आ गए होंगे, अपने मम्मी और पापा के, तो उनके और उनके साथ उनके लेजेंडरी डायलॉग्स के भी, जो कि हर देसी घर में सुनने को मिल ही जाते हैं. चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या कहीं से भी हो, आपको कुछ बातें हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो कॉमनली सुनने को मिलेंगी. जैसे कि मेरे केस में तो हमारे जमाने में सारे, अगर वो सेंटेंस शुरू हो रहा है ना कि हमारे जमाने में, मतलब तो आपने कुछ गड़बड़ करी है. और वो फिर बताएंगे कि हमारे जमाने में तो हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, 5 किलोमीटर पैदल चलते थे, ये वो. तो ये तो मेरे घर की कहानी है. आपकी क्या स्टोरी है, आपके देसी पेरेंट्स के वो रेगुलर डायलॉग्स क्या हुआ करते थे, आप मुझे बता सकते हैं बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555.

आज का थ्रोबैक थर्सडे का टॉपिक काफी ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देसी पेरेंट्स के रेगुलर डायलॉग्स के बारे में। और अभी अभी हमें सुल्तान जी का फोन आया और उन्होंने याद किया अपने पापा, अपने फादर को, कि वो कैसे ना बचपन में जब वो शैतानी वगैरह करते थे तो वो उनको एक कॉमनली यूज जो डायलॉग था वो गुजराती में कहते थे कि एक जबड़ा मार देस। आई होप मैंने सही बोला है। और वो ऐसे हाथ वगैरह बिल्कुल कभी नहीं उठाया एज अ फादर, लेकिन वो डायलॉग उनको जरूर बोलना है। ये ना पापा लोग काफी क्यूट होते हैं यार। मतलब चाहे घर में ना, मुझे भी याद है कि मेरे घर में छोटा सा थोड़े टाइम के लिए अगर फैन चलता रह गया, टीवी चलता रह गया कोई देख ना रहा हो, या फिर रूम की लाइट अगर 30 सेकेंड्स के लिए भी ऑन रह गई हो, तो एक डायलॉग गारंटेड था कि बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा। और मैं सोचती थी कि लॉजिकली हाँ पापा, आप ही को भरना पड़ेगा ना, मेरे पास तो है नहीं। और कुछ और कॉमन डायलॉग्स थे मम्मी के जो कि थे कि उठ जाओ दोपहर हो गई है, और उठ के अगर आपने फोन वगैरह में या फिर क्लॉक में टाइम देखा तो आपको पता चला कि यह तो सिर्फ 8 बजे हैं सुबह के, उतने में दोपहर हो जाते थे उनके। वैसे व्हाट्स योर स्टोरी? अगर आपको ऐसे किसी रेगुलर डायलॉग्स वगैरह के बारे में मुझे बताना हो, हमारे लिसनर्स को बताना हो, तो कॉल कीजिए हमें @ 9722355555।

0: आज का हमारा थ्रोबैक थर्सडे का जो टॉपिक है, आज हम याद कर रहे हैं देसी पेरेंट्स के रेगुलर देसी डायलॉग्स के बारे में। और बहुत लोगों का कॉल आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको ये टॉपिक। सब अपने अपने मम्मी पापा के जो डायलॉग्स वगैरह है ना, उनके बारे में शेयर कर रहे हैं। तृप्ति जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनके जो कॉमन घर के डायलॉग्स होते थे उनके मम्मी पापा के, उनमें से कुछ थे कि हमने बहुत दुनिया देखी है बेटे, तुमने तो कुछ नहीं देखा आज तक। और अगर बहुत लाइट वगैरह जलता रह जाए और लोग नहीं है उस कमरे में, तो उनके जो है हस्बैंड या वो सब आज तक बोलते रहते हैं कि आज दिवाली है क्या, मतलब बहुत ही सरकास्टिक टोन में। और भी कॉल्स आए, एक लिसनर के, उन्होंने नाम नहीं शेयर किया है बट डायलॉग जरूर शेयर किया है कि उनको उनके फादर बोलते थे कि जुत्ती दे दो क्या, मतलब डांट बहुत पड़ती थी। और वो क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे और जब घर से लौटते थे लेट वेट होके आते थे तो उनकी मम्मी उनको बोलती थी कि आ गया गू खा के। सोनी साहब का भी फोन आया, उन्होंने बोला कि अगर नहीं पढ़ोगे तो हलवाई के यहाँ बर्तन मांझने होंगे।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
5: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
8: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
9: Your new destination has arrived.
10: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
10: It's called being predictable.
11: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी और द शो है आफ्टरनून अड्डा। स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:10 और अब जो ये सेगमेंट था हमारा आज का थ्रोबैक थर्सडे का, जहाँ पे हम बात कर रहे थे अपने देसी पेरेंट्स के रेगुलर डायलॉग्स के बारे में, अब उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। सच कहे तो बचपन में ये डायलॉग्स इरिटेटिंग लगते थे कि ये क्या रोज रोज सेम चीज, लेकिन आज जब हम घर से दूर हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, तो वही आवाजें याद आती रहती हैं कि खाना खाया, घर कब आओगे, अपना ख्याल रखना। देसी पेरेंट्स शायद अपना प्यार डायरेक्टली एक्सप्रेस ना कर पाएं, लेकिन उनके डायलॉग्स में उनका कंसर्न, केयर और प्यार सब कुछ छुपा होता है। तो आज ज़रूर फ़ोन कीजिए अपने मम्मी पापा को और उनके फेवरेट डायलॉग्स उन्हें याद दिलाइए। और हमें एक रिक्वेस्ट आई थी प्ले करने के लिए आज फिर जीने की तमन्ना है का लेटेस्ट वर्जन, बट वो मुझे मिल नहीं पाया है, सो सॉरी। बट उसकी जगह पे मैं एक प्यारा सा गाना बजा रही हूँ और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी गिव अवे राउंड आने वाला है जहां आपको मिल सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। सो स्टे ट्यून्ड।

भाई ट्विस्ट तो चंडीगढ़ बाइट्स के खाने में भी है, स्पेशली मंडे टू फ्राइडे, जहां वो अपने डिशेस में ट्विस्ट लाते हैं, रोटेट करते रहते हैं, सेम डिश आपको नहीं मिलती। लंच के टाइम पे ये डिश जो है रोटेट होती रहती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और अगर आपको जीतना है यहाँ पे $10 का ऑफ अगर आपको चाहिए, तो एक गिव अवे राउंड आ चुका है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको इसका जवाब देना है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो फन एशिया में लास्ट एक महीने में आपने ये चंडीगढ़ बाइट्स का जो है गिव अवे ना जीता हो, ताकि सबको मौका मिले चंडीगढ़ बाइट्स का खाना वगैरह खाने का, भाई इतना टेस्टी होता है। तो मैं सवाल पूछने जा रही हूं, अगर आपका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है। नंबर भी मैं बताऊंगी जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और सुनिए कि जो जनवरी से दिसंबर जो हमारे 12 महीने होते हैं, आपको बताना है कि उसमें कौन से महीने में 28 डेज होते हैं। अगर आपको जवाब पता है, अगर आप ये गिव अवे जीतना चाहते हैं, तो कॉल कीजिए एट 972-235-5555।

हमारा गिव अवे राउंड यहाँ पे खत्म हो गया है और बहुत सारे कॉल्स आए हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स आए. क्वेश्चन था हमारा ये कि जनवरी टू दिसंबर जो हमारे 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, उसमें कौन से महीने में 28 डेज होते हैं. और कुछ लोगों ने फोन करके वो जो इस पूरा जो ट्रिक क्वेश्चन था ना उसमें फंस गए, मुझे बहुत मजा आया. उसमें उन्होंने बोला कि इट्स फरवरी, और कुछ लोग काफी स्मार्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन को दोबारा पूछा और फिर बोला कि सिर्फ 28 डेज या 28 डेज. और मुझे समझ में आ गया कि उनको क्वेश्चन समझ में आ गया वहाँ पे. तो जवाब ये है कि भाई सारे ही महीनों में 28 डेज होते हैं. और जो सबसे पहले सही जवाब हमें मिला है वो सोहेल से मिला है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सोहेल, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइस की तरफ से $10 ऑफ ऑन डाइनिंग ऑप्शन. जब आप वहाँ पे जाएंगे खाना वाना खाएंगे, $50 का जब बिल बनेगा ना तब आपको $10 ऑफ हो जाएंगे. मैकडॉर्मर ड्राइव इन एलन में लोकेटेड है और जैसा कि मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे इनके डिशेस रोटेट होते रहते हैं लंच के टाइम पे. अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज चंडीगढ़बाइट्स.com.

0: ishwar.com.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमैक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
3: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल.com.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We are growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
6: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com. Your 360 insurance solution.
7: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
8: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
9: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG Fintax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG Fintax. Plan smart, save more.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में? सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी एंड द शो इज आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:38 और मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से एक हेल्थ टिप ऑफ द डे बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो और आपको विजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लरी विजन नहीं फील हो रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपकी जो आंखें हैं वो हेल्दी हैं। हो सकता है कि उनमें आई डैमेज हो गया हो, क्योंकि जो आई डैमेज होता है डायबिटीज की वजह से वो आप जो ब्लरी विजन है उस वो डेवलप होने से पहले ही होने लगता है, शुरू हो जाता है आपकी जो डीजेनरेशन वगैरह होती है इसकी। तो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर डायबिटिक आई एग्जामिनेशंस किया जाए ताकि और इसको जो है प्रिवेंट किया जाए अपने आई डैमेज को। तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी आई केयर एग्जामिनेशन के लिए जाएं एंड पैशन हेल्थ केयर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द राइट चॉइस फॉर यू। और आँखों के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि अपने नैना का ख्याल रखा जाए।

अगर आपकी एनिवर्सरी आ रही है, कोई एंगेजमेंट है, कहीं पार्टी में जाना है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई ओकेशन है, या फिर अगर आपको खुद को एक ट्रीट देना है, तो अगर आपको इन सब स्पेशल मोमेंट्स में थोड़े और शाइन, थोड़ा और स्पार्कल ऐड करना है, तो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स जाइए, जो कि लोकेटेड है प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को में, क्योंकि ये है परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, जो कि एलिगेंट है, टाइमलेस है, एंड इट इज क्राफ्टेड टू शाइन एंड स्पार्कल. यहाँ मिलेगा आपको ब्यूटिफुल रिंग, इयर रिंग्स, डैंगलिंग नेकलेसेस भी मिलेंगे, और कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स भी मिलते हैं. और अगर आप जा नहीं पा रहे, अगर आपको सिर्फ घर बैठे भी एक्सप्लोर करना है कि क्या नए स्टाइल्स हैं मलाबार डायमंड्स में, क्या मिल रहे हैं, तो आप उनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारा कुछ लेटेस्ट कलेक्शन अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी.

आप इतना सही ना कह रहे हैं, तो मैं बता ही देती हूँ कि अगर आपको एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प करे, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए कि और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में, और तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो माई टाइम इक्विटी जरूर जाएं। दिस इज लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, और माई टाइम इक्विटी है ना, आपको काफी पर्सनलाइज सोल्यूशन बताएंगे जो कि आपके गोल्स के अराउंड पूरा डिजाइन किया जाता है। तो डू विजिट देयर वेबसाइट विच इज mytimeequity.com या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं @4697021272।

ये जो फ्रेज है ना, तुम क्या मिले, ये जब मैं पेस्ट्री ईटरी गई थी और वहां का जब मैंने फ्लेवरफुल चाट इंजॉय किया था और कबाब वगैरह भी खाए थे, तब मैंने उनको यही कहा था कि थैंक गॉड तुम मिल गए, वरना इतना टेस्टी खाना तो मुझे और कहीं नहीं मिलना था डैलस में। क्योंकि यहाँ आपको मिलता है जो बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड है उसके साथ मॉडर्न फ्लेवर, तो आप यहाँ ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर हो, डेट नाइट हो या फिर फूडी मीटअप हो, डू चेक आउट देयर ऑप्शंस। पेस्ट्री ईटरी अवेलेबल है और हब 121 लोकेटेड है यहाँ पे वो। और अगर आपको इसके बारे में और कोई डिटेल्स चाहिए, जैसे कि उनका मेन्यू हो गया, उनके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स हो गए, तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज पेस्ट्री ईटरी.com।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
18: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
19: लिया.
18: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
19: नहीं आया.
18: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
12: Visit www.senadainc.com today.
20: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

This was Senorita requested by Safi, or you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Main hu RJ Simmi, and this is your favorite show, The Afternoon Adda, which is brought to you by AG Fintechs, which is one of the, again, fastest growing firm in the US. Aur AG Fintechs hai na, sare business owners ke liye ek khas seminar leke aaye hain. So, agar aap $200,000 se zyada kamate hain annually, to ye सेमिनार बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहां आपको मिलेगा लीगल स्ट्रेटजी जो कि हेल्प करेगा आपको टैक्स बर्डन रिडक्शन में वाया स्मार्ट प्लानिंग. ये सेमिनार का नाम है टैक्स प्लानिंग सेमिनार, हो रहा है ऑन जुलाई 10th फ्राइडे 6 PM ऑनवर्ड्स फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में. और जो भी रजिस्टर करेगा, जो भी सेमिनार अटेंड करेगा, उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं. सीट्स लिमिटेड हैं, तो प्लीज प्लीज रिजर्व योर स्पॉट टुडे अगर आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्टर, तो आप अभी जाके कर सकते हैं ऑन agfintechs.funasia.net पे. agfintechs.funasia.net.

अगर आपको भी ऐसे ही विशालन शेखर के हिट्स पे इंजॉय करना है, थिरकना है, तो आप उनके कॉन्सर्ट में जरूर जाइए। इट इज हैपनिंग ऑन जुलाई 12th गाइस, संडे को एट कर्टिस कलवेल सेंटर गार्लैंड में। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन सेल, kashpatelproductions.com पे अवेलेबल है। और अगर आपने फनेशिया का कोड यूज किया तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। आई मीन डैलस बॉलीवुड फैंस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? द सुपर हिट टूर ऑफ विशालन शेखर is going to be live very, very soon.

क्या आपको भी ये शिकायत है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो पूरा अपॉइंटमेंट वगैरह स्केड्यूल करके प्रॉपर टाइम लेके, तो डॉक्टर आपके साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं, मतलब 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, और फटाफट रफा दफा कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, तो अगली बार ज़रूर यहाँ पर जाएँ, क्योंकि यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट जो है डॉक्टर के साथ 30 मिनट्स की होती है। वो पूरे आधे घंटे आपके हेल्थ के बारे में, आपकी बैकग्राउंड वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं, ताकि आपका बेहतर केयर हो पाए। तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बहुत सारी सर्विसेज लेके आए हैं, चाहे वो आपको अपना एनुअल फिजिकल चेकअप कराना हो, एंग्जाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन हो फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 की डिफिशियंसी टेस्टिंग करानी हो, ये सब कुछ आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे मिल जाएगा। अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है तो डू कॉल देम एट 214-666-6259. Okay, I'll repeat the number. It's 214-666-6259.

0: टेक्सास बिजनेस ओनर्स की भी ऐसे ही बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगी अगर उन्होंने अपना एनर्जी पार्टनर जो है तारा कमर्शियल एनर्जी को बना लिया, क्योंकि ये 2002 से कॉम्पिटेटिव रेट्स देते आए हैं, रिलायबल सर्विसेज हैं इनकी और इनके एनर्जी प्लान्स है ना काफी कस्टमाइज है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको उनसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8444-428-2808 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए जो कि है taraenergy.com।
1: Yeah, here we go again. Authentic, original and better than our right.

आई होप मैंने भी आपका दिल पा लिया है. वैसे मेरे जाने का वक्त हो गया है. दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम हर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा. मैं मिलूंगी आपको मंडे को फिर से 12:30 से 2:30 बजे तक. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मजे में रहिए, क्योंकि ये एक जिंदगी, एक ही जिंदगी है तो काफी नहीं है. ठीक है.

0: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
1: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
0: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर

0: मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
1: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
0: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
6: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio sun rahe hain aap. Main hu Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Simi, thank you for an absolutely beautiful show as always. Fun Asia aapko rakhta hai entertained as well as informed 24/7 365 days a year hum rehte hain aapke liye lekar aate hain entertainment प्लस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और आज है जी थर्सडे. थर्सडे को आप जानते हैं सुनहरी किरण पे आप सुनते हैं द फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ आई ब्रिंग यू फूड जंक्शन, जिसमें हम बात करते हैं, जाते हैं डिफरेंट ममालिक में, यानी के दूसरे दूसरे देशों में, और उनके किसी शहर को पिक करते हैं. एज अ टूरिस्ट जब हम उस शहर में जाते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं, उनके देसी फेवरेट्स क्या हैं, वो सारा कुछ आपके लिए लेकर आती हूँ इन फूड जंक्शन एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. लास्ट वीक हमने फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ सेलिब्रेट किया एंड वी वर in Singapore. I told you so many things about Singapore. Aap logon ne bhi apni bahut sari kahaniyan mere saath share ki, who all of you who have been to Singapore, some food stories and some other stories as well. To aaj hai the rest of the Thursdays jo hamare hote hain wo aap hi ki farmaish par lekar aati hu aapke liye segment wo 90s ka Bollywood, kuch aise khoobsurat gaane jinhone 90s ke liye hamara jo wo kehte hain na mohabbat, junoon, ishq of the Bollywood of 90s ko ubhara aur aaj tak barqarar रखा हुआ है. सो लेट्स जल्दी से स्टार्ट द फर्स्ट सॉन्ग. दिस इज वो 90s का बॉलीवुड राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

जी हाँ, फिल्म चालबाज से सुन रहे थे आप ये गाना। वैसे जो है आपकी रिकमेंडेशंस में जरूर ले रही हूँ। आपको कोई पसंद का गाना 90s का सुनना है तो मुझे कॉल करके जरूर बताइए। इफ आई कैन फिट इन, आई कैन फाइंड अ गुड क्वालिटी सॉन्ग, मतलब HD क्वालिटी, तो आपके लिए डेफिनेटली प्ले किया जाएगा। 90s का बॉलीवुड है जी, आपकी और मेरी दोनों ही की पसंद है। सो सब मिला के हम बनाएंगे एक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल म्यूजिकल जर्नी। लेकिन बिफोर दिस कि मैं एक अगला गाना प्ले करूं, आपको बताती चलूं कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो हम सब जानते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यू डोंट यू नो यू हैव टू डील विद द इंश्योरेंस एंड द पेपर वर्क एंड द लीगैलिटीज एंड द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन। उसके साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। सो आप अपना ख्याल रखिए और लेट अटर्नी Omar Khwaja take care of the rest. Ji haan, attorney Omar Khwaja aur unki team will help you fight your case, get you the best compensation that you deserve. And the best part, aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap ye case jeet nahi jate. So that is an absolute win-win situation for you. Aur is situation, stressful situation mein rahat ka saman ban ke aayi hai ye khabar aapke liye. You or someone you know is going through something like that, please give attorney Omar Khwaja a call. Give them a call and talk to them at least and see what you can how they can help you. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is that number, or you can visit their website, which is attorneyomar, OMAR, attorneyomar.com.

1992 की ये एक्शन थ्रिलर मूवी विश्व आत्मा से सुन रहे थे आप ये गाना, डायरेक्टेड बाय राजीव राय. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड मूवीज और एम्बिशियस प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता था उस वक्त का, यानी कि 1990s के दौर का. फेमस फॉर इट्स स्वीपिंग इंटरनेशनल लोकेशंस एज वेल एज विजू शाह'स आइकॉनिक म्यूजिक. अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस फिल्म की, विश्व आत्मा की, कि दिस वॉज प्रोड्यूस्ड बाय त्रिमूर्ति फिल्म्स एंड विश्व आत्मा वॉज द very first Bollywood film to be shot extensively in Kenya. तो ये एक interesting fact आपके लिए फिल्म विश्वात्मा का. कुछ ऐसा ही लेके आते हैं हम आपके लिए वो 90s का Bollywood में गाने और गानों के साथ फिल्मों की, कुछ 90s की फिल्मों की कुछ बातें.

अगर आप H1B, F1 या फिर L1 वीजा पे हैं या कोई और आपका नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस है और आप जो है वो प्लान कर रहे हैं टू योर पाथ टू US रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस्ड टीम स्पेशलाइज exclusively in immigration law, including EB-5 investor visa programs, family and employment visa, perm labor certification, as well as US citizenship. So, in saron ka, ya iske ilawa bhi aapka koi immigration ke hawale se sawal hai, to attorney Seema Mehta aur unki team is ready and waiting for you to send them an email so they can get back to you. So, email ID note kar lijiye, email bhejiye, and they will get back to you with all the information. That email ID is info@seemamehtalawfirm.com. Once again, that email ID is info@seema, S-E-E-M-A, Mehta, M-E-H-T-A, lawfirm.com. So don't forget to send that email to the law officers of Seema Mehta. अच्छा जी, ये जो गाना आप सुन रहे थे, पापा कहते हैं से ये गाना आप सुन रहे थे, starring Jugal Hansraj as well as Mayuri Kongo. मेरे ख्याल दोनों ही का एक्टिंग डेब्यू था ये. फिल्म जो है वो मॉडरेट सी रही, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी ये फिल्म, बट इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. और इस को बता दी चलूँ आपको कि गाने जो हैं, म्यूज़िक जो है वो राजेश रोशन ने कंपोज़ किया था, जबकि इसके लिरिक्स जो हैं वो जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे. और सालों बाद घर से निकलते, ये जो गाना भी आप सुन रहे थे, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी. और वो क्या बनी कि 2018 में जब अमाल मलिक ने इस गाने का एक रीमिक्स्ड वर्जन बनाया, जो कि डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, तो जावेद अख्तर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जी. ही वॉज सो एंगर्ड बाय द अनअक्रेडिटेड चेंजेस दैट वर मेड टू हिज सॉन्ग दैट ही सेंट अ लीगल नोटिस to the creators. उसके बाद क्या हुआ मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि इस लीगल नोटिस का क्या बना, लेकिन बहरहाल ये कॉन्ट्रोवर्सी मुझे ज़रूर याद है कि घर से निकलते पे जब अमाल मलिक का नया वर्जन आया था तो कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी. वैसे ओरिजिनल घर से निकलते ही से ज़्यादा बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई वर्जन अब तक बना है. सो वो 90s का बॉलीवुड में कुछ 90s की बातें और बहुत सारे 90s के गाने.

All right, जी अनु, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड फॉर रिमाइंडिंग अस कि जुगल हंसराज का जो वैसे तो डेब्यू, एक्टिंग डेब्यू बचपन में ही हो गया था, अगर आपको गाना याद हो, लकड़ी की काठी, दैट वाज जुगल हंसराज एंड उर्मिला मटोंडकर. और उसके बाद बड़े होके उनका जो डेब्यू हुआ एज अ हीरो वो हुआ आ गले लग जा में, आई थिंक वो भी उर्मिला मटोंडकर के साथ ही था. तो ये जो फिल्म थी जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, पापा कहते हैं, इसमें हुआ था मयूरी कोंगो का डेब्यू. तो आप लोगों की फोन कॉल्स का रहती हैं और मुझे मालूम है कि इसीलिए ये 90s का सेगमेंट जो है हम करते हैं, 90s का बॉलीवुड इज सो लव्ड बाय यू ऑल बिकॉज वी एवरी वन ऑफ अस कनेक्ट विथ दैट 90s का बॉलीवुड. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, कीप देम कमिंग.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
8: Wait, itna sab aur price?
7: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: इट्स लॉसन।
9: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
10: इट्स लॉसन।
9: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
11: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
14: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
15: क्या?
14: सैलरी बंद हो जाती है
15: और बिल्स बंद नहीं होते।
14: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स स्ट्रेटजी बनाते हैं।
15: मतलब
14: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
7: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
16: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
17: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
17: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
17: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
17: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
18: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
19: हाँ।
18: घर रिलोकेट करनी है?
19: हाँ।
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
19: हाँ भाई हाँ।
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
20: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
21: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
10: भूख लगी
19: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
21: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
19: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
22: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.
23: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

1991 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी 100 डेज से सुन रहे थे आप ये गाना जिसमें जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित हमें नजर आए. दिस वाज एक्चुअली अ रीमेक ऑफ अ 1984 तमिल फिल्म. और स्टोरी जो है वो ऑफ कोर्स फॉलो करती है एक लड़की को जिसको विजन्स आते हैं और जो मर्डर होते देख लेती है, एंड देन किस तरह से शी यू नो वॉन्ट्स टू अनकवर द ट्रूथ, और उनकी आगे क्या कहानी चलती है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जैकी श्रॉफ इन all that. And that is, I actually absolutely loved 100 Days. बहुत ही खूबसूरत कहानी और बहुत ही ज्यादा प्यारे मजे मजे के गाने. अच्छा बताऊं आपको कि बिफोर द स्क्रिप्ट चेंजेस एंड जैकी श्रॉफ एंड माधुरी दीक्षित वर साइंड, लीड रोल्स जो इस फिल्म के हैं वो जावेद जाफरी और नीलम जो है नीलम कोठारी को लीड रोल के लिए मतलब सोचा जा रहा था, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया ड्यू टू सम स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. और उसके बाद जो है वो जावेद जाफरी जो हैं वो साइड रोल में आए 100 डेज के. और आई डोंट नो ये किस तरह हुआ और जैकी श्रॉफ कैसे मेन लीड में आए, बट दैट्स हाउ द गॉसिप के गलियारों से ये खबरें जब जो मैं आपके लिए लाती हूँ ये गॉसिप के गलियारों से ही आती हैं. तो एनीवेज दिस वाज द स्टोरी ऑफ 100 डेज फॉर यू. और अब आगे बढ़ रहे हैं जी गाने, वो 90s का बॉलीवुड आपके लिए सेगमेंट चल रहा है राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आप सबकी फोन कॉल्स का, पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलूं कि अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, यानी कि वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई और स्पेशल सेलिब्रेशन, तो सबसे पहला हमारे सर पे ये स्ट्रेस आ जाता है कि वेन्यू क्या होगा, डेकोर क्या होगा, केटरिंग कौन करेगा, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में हम परेशान होते हैं. और जाहिर सी बात है फिर वो सारा कुछ करने में अपनी पार्टी का को एंजॉय करना तो हम भूल ही जाते हैं. तो ये सलूशन मैं आपको देने लगी हूं, अपना सारा स्ट्रेस दे दीजिए वैनेसा इवेंट्स को. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटीफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड. तो बेहतरीन अरेंजमेंट आपके लिए करेंगे ताकि आप फोकस कर सकें अपनी पार्टी पे, इन मेकिंग सम ब्यूटीफुल memories while the Vanessa events will take care of the rest. You have any questions, give Hari Basera a call. That number is 469-442-8770. Ek baar phir number note kar lijiye, 469-442-8770. Call Hari Basera sahab right now if you have any event lined up. This is Vanessa Events, your celebration partner.

परदेस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और बहुत ही खूबसूरत कुमार सानू की आवाज़ में इस गाने को शाहरुख खान पे पिक्चराइज किया गया। मुझे परदेस फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद है, आई थिंक आई कैन, आई मीन आई हैव वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई स्टिल कैन वॉच इट। कभी भी मेरा मूड हो जाए तो मैं परदेस फिल्म ज़रूर लगा के दोबारा, जैसे दिल तो पागल है या कुछ कुछ होता है या फिर हम आपके हैं कौन, इसी तरह से मुझे परदेस भी उतनी ही अच्छी लगती है। एनीवेज जी, आगे बढ़ रही हैं और परदेस फिल्म के बारे में आपको ये बताती चलूं कि माधुरी दीक्षित जो है वो पहली चॉइस थी परदेस फिल्म की। सुभाष गाई ने माधुरी को ही जहन में रख के गंगा का रोल लिखा था, एंड द गंगा नेम केम फ्रॉम खलनायक्स गंगा एज वेल। आपको याद हो कि खलनायक में भी माधुरी का जो टाइटल नाम था वो गंगा था, लेकिन कुछ इस तरह का फॉल आउट हुआ माधुरी और सुभाष गाई के दरमियान के माधुरी ने इस फिल्म में इनकार कर दिया काम करने से, एंड देन ही ऑडिशन अ फ्यू अदर एक्ट्रेसेस और महिमा चौधरी उनके सामने आई और जो टीम थी उनका फोकस किसी और पे था, बट सुभाष गाई एक्चुअली रियली लाइक्ड महिमा फॉर द रोल ऑफ गंगा, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक इट वाज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली डन रोल बाय महिमा चौधरी। अच्छा जी, ये हुई है बात, और अब अगला गाना आपके लिए लगाने लगे हैं 90s का बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप 90s की बॉलीवुड, ये सेगमेंट ही आपकी फरमाइश का है, तो आप जब आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने इसको डाला है, तो थैंक यू। आप सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं और रिकमेंडेशंस भी देते हैं।

जमाना दीवाना फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, द टाइटल ट्रैक ऑफ जमाना दीवाना. लिरिक्स थे समीर के, म्यूजिक था नदीम शर्वन का, और रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. शाहरुख खान और रवीना टंडन इस फिल्म में थे. द फिल्म डिड नॉट डू वेल एट ऑल. देर वॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा एसोशिएटेड विद इट, डिलेड प्रोडक्शन, बिहाइंड द सीन्स ड्रामा, कभी किसी का फॉल आउट, कभी किसी का फॉल आउट, एंड दैट रियली शोड इन द मूवी एज वेल. अनु, आपकी रिकमेंडेशन पे ये गाना हम प्ले कर रहे थे और अब आगे बढ़ रहे हैं. आगे बढ़ते हुए अब जो गाना मैं आपके लिए लगाने लगी हूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, पत्थर के फूल से लिया गया है. बहुत ही मजे का, हैपनिंग, यू नो, स्माइली. वो ये इस तरह के गाने जो है ना, वो सुन के आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और दिल जो है वो खुद ब खुद ही जैसे होता है कि थोड़ा हैप्पी हो जाता है, हैप्पीनेस की फीलिंग आने लगती है. दिस इज कभी तू छलिया लगता है.

0: जी हाँ, तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे याद से तो जीवन भर का हमारा नाता जुड़ा हुआ है जी। जमाना हो गया आपके साथ कनेक्ट करते हुए राइट हेयर ऑन योर यू नो एयरवेव्स ऑफ फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम इज द प्लेस फॉर यू टू स्टे। मैं हूँ किरण, आपके साथ 5 बजे तक मौजूद रहूंगी। सम ब्यूटिफुल 90s का म्यूजिक आपके लिए प्ले किया जा रहा है, आपकी रिकमेंडेशन भी ली जा रही है। स्टे ट्यून्ड।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
8: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ?
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI

0: charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: Kyun?
4: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: Achha. तो सीधा वही ले चलो
0: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग फोकस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स अकेडमी वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव
6: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स अकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी अकेडमी कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099 99.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
8: Mere kal wale khane mein dosa aane wale khane mein dosa.
9: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश योर सर्च एंड्स हियर
10: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स क्रिस्पी डोसास फ्लफी इडलीज कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस
11: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
16: कितने आदमी थे
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फन एशिया सुनता है
18: फर्स्ट टाइम देखा

जी हाँ, फिल्म का नाम भी जान तेरे नाम ही था, जो रोनित रॉय और फरहीन के ऊपर पिक्चराइज्ड हुई ये फिल्म। और ये जो गाना आप सुन रहे थे, ये इतना ज़्यादा, इस फिल्म के दो गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनमें से एक था ये अखा इंडिया जानता है। और ये क्यों पॉपुलर हुआ? कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इसे किया बहुत ज़्यादा पॉपुलर, एंड इट बिकेम अ मैसिव क्लब एंड रेडियो हिट। और इसी के साथ एक और गाना विच वॉज वेरी पॉपुलर फ्रॉम दिस मूवी, जान तेरा नाम इज, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। तो ये गाना जो है वो कहते हैं कि इतना ज्यादा हिट हुआ था कॉलेज के स्टूडेंट्स के दरमियान के, इट एक्चुअली बिकेम एन अनऑफिशियल फेयरवेल एंथम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कुछ गाने, कुछ यू नो लिरिक्स का इम्पैक्ट ही ऐसा होता है कि वो बन जाते हैं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा। तभी बॉलीवुड, और स्पेशली वो 90s का बॉलीवुड, आज तक हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में, ऐसे गाने, ऐसे लिरिक्स, ऐसे मोमेंट्स हमें उन फिल्मों में मिले हैं जो हमारे साथ साथ हर वक्त चलते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं जी, आगे बढ़ते हुए अगला गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं। दिस इज टेकन फ्रॉम दी सुपर सुपर सुपर डुपर हिट फिल्म। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यू वी ऑल लुक फॉर अ डॉक्टर और अ प्राइमरी केयर फैसिलिटी जहाँ हमारी सेहत को, मतलब हमें पेशेंट नहीं बल्कि थोड़ा इंसानों की तरह, फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए। और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे एग्जैक्टली यही होता है। एवरी अपॉइंटमेंट इज 30 मिनट्स के लिए स्केड्यूल की जाती है, कोई जल्दबाजी नहीं की जाती, पूरे 30 मिनट्स आपको देखा जाता है, एंड फॉर 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल्स, एनजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, और भी बहुत कुछ अवेलेबल है प्राइमरी इस पे आपके लिए, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे। तो आप अपनी स्केड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग देम एट दिस नंबर। कोई आपका सवाल है, कोई कंसर्न है, कॉल देम एट दिस नंबर, दे विल बी एबल टू गाइड यू। दैट नंबर इज 214-666-6259 इज दैट नंबर। दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, वेयर योर हेल्थ इज देयर पैशन।

0: कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी आशिकी 1990 की. ये फिल्म आशिकी सिर्फ एक रोमांटिक मूवी नहीं थी, इट वाज अ म्यूजिकल फिनोमिनन. फिल्म का जो साउंड ट्रैक था जो नदीम श्रवण ने दिया था वाज सो वाइल्डली पॉपुलर, आप कह लीजिए मतलब क्रेजी पॉपुलर हो गया था. और ये 90s के जमाने की बात हो रही है, 1990 में ये फिल्म आई थी. अब आप देख लीजिए कोई सोशल मीडिया नहीं था कि यहाँ रीलें चल रही हैं, इस गाने को पॉपुलर करना है तो इसकी रीलें इशू कर दो, इस पे मीमें बनानी शुरू कर दो, तो गाना खुद ब खुद हमारे जहनों में बस जाता है थोड़ी बात देर बाद जब हमारे पास 100 रीलें आती हैं उस गाने की. बट दैट वाज दोस टाइम्स जब हमें कैसेट्स खरीदनी होती थी और कैसेट्स खरीद के अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे हम कैसेट्स पे और उनको खरीदते थे. और जो गुलशन कुमार ने इस को प्रोड्यूस किया था इस म्यूजिक को, तो कहते हैं कि देयर टीम गुलशन कुमार एंड देयर टीम स्टॉप्ड काउंटिंग द कैसेट सेल्स आफ्टर दे रीच 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ कॉपीज या यूनिट्स जब बिक गए उनके सेट्स के तो उन्होंने काउंटिंग ही छोड़ दी. शायद उनके पास कोई सिस्टम नहीं था इतने ज्यादा काउंट करने का, ये दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग. बट ऑफकोर्स आशिकी के गाने आज भी सुपर हिट हैं, वही पैशन, वही क्रेज, वही इमोशंस और साथ ही साथ वही एहसास जो कि आशिकी में वाकई होना चाहिए. तो अब जो है इस आशिकी से हम अगले गाने की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं लेके आई हूं आपके लिए एक गिव अवे. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फूडिस्तान जो है जो कि ऑबरी में लोकेटेड है, दिस इज अ प्लेस जहां पे आप जाके अपनी फ्रेश ग्रोसरीज ले सकते हैं, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स भी हैं उनके पास, साथ ही साथ लाइव पानीपुरी का स्टेशन है. अगर आपको फ्रेश मजे मजे की पानीपुरी खाने का शौक हो, अगर आपको गन्ने के जूस का शौक है तो फ्रेश गन्ने का जूस बन रहा है वहां पे, यू कैन गो बाय इट. एंड उसी के साथ ये सारी तो चीज़ें हुई और वहाँ पे अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles. तो जी ये तो हुआ फूडिस्तान इन ऑबरी आपके लिए क्या क्या ला क्या क्या आपके लिए सहूलतें प्रोवाइड करता है. लेकिन उसी के साथ अब आप एक जो है गिव अवे जीत सकते हैं, यानी कि यू कैन विन अ फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट जो कि फूडिस्तान ऑबरी के अंदर लोकेटेड है. इट इज़ एन अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी. और अगर आप ये फ्री आइटम जीतना चाहते हैं तो हम कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण शुरू कर रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कीजिए और जीत सकते हैं आप ये मौका ऑफ दिस फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इन फूडिस्तान इन ऑबरी. सो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑबरी जाना होगा इस गिव अवे को अवेल करने के लिए. अच्छा, 90s के दौर की बात हो रही है और हम यही बात कर रहे थे आशिकी के गाने से हम अपनी बात का शुरुआत करते हैं. अच्छा, हमने ये आशिकी का गाना आपके लिए प्ले किया, आशिकी 2 भी बन चुकी है, आशिकी 3 भी बन चुकी है, नए नए हमें लोग दिख रहे हैं. तो मुझे ये बताइए कि आशिकी की जो ये सीरीज है 1, 2 और मेरे ख्याल 3 भी बन रही है कि बन चुकी है कि पता नहीं क्या चक्कर है, शायद मैं जल्दी से आपको देख के बताती हूँ. आशिकी 3 सुना है कि बन रही है शायद कार्तिक आर्यन के साथ, बट आई एम नॉट श्योर. अगर कोई मूवी 90s की आप आज के दौर में बनती हुई देखना चाहें, फर्ज करें मतलब नॉट अ रीमेक, फर्ज कीजिए वो आज ही के दौर में बन रही होती, तो आप कौन सी मूवी को देखते आज के दौर में बनते हुए कि बिल्कुल एप्ट होती 2026 के हिसाब से, आजकल के मॉडर्न जमाने के हिसाब से बिल्कुल एप्ट होती, या मतलब कौन सी ऐसी मूवी है जो आप सोचते हैं कि आज के दौर में बड़ी एप्ट होती बनती और कौन उसकी कास्ट होनी चाहिए थी. जरा सोचिए, सोच के घोड़े दौड़ाइए और मुझे बताइए 9722355555 पे कॉल करके विच मूवी. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. अपना नाम बताइए.
1: Hi, this is Meena.
0: Is it Meena or Leena?
1: Meena.
0: Okay, all right. Bataiye Meena.
1: Maybe Ishq movie.
0: Ishq. Oh, Aamir Khan and Ajay Devgan wali.
1: Yes, Kajol, Aamir Khan, Juhi Chawla and Ajay Devgan. Yeah, it's a nice movie.
0: Okay, agar so, wo aajkal banti, to aap kaun kisko star cast bhi dekhna chahti?
1: Maybe Alia Bhatt, Varun Dhawan. Well, yeah, Alia Bhatt, Varun Dhawan, Sharwari, because she's very good, and Kartik Aaryan.
0: Oh, interesting, very interesting. So that is amazing. Aapne badi zabardast movie hame batayi, Meena. Thank you. Sunte rahiye. Main abhi announce karti hu right after this. Thank you for your call. Fanisha, you're live on air. What is your name?
2: Ji, Mahesh bol raha hu.
0: Ji, Mahesh saab, bataiye.
2: 90s movie, my all-time favorite, Andaz Apna Apna. And the new cast should be Ranbir Kapoor, Varun Dhawan, कृति सनन एंड मृणाल ठाकुर.
0: वाओ, आपने तो बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया है.
2: नो, बिकॉज आई फील इट्स अ वेरी एवरग्रीन मूवी, और जो उसको सक्सेस उस टाइम पे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो मे बी अ रीमेक विल डू एंड यू नो गेट द सक्सेस स्टार्टिंग इटसेल्फ.
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच महेश. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: अंशु सिंह.
0: जी अंशु, बताइए, व्हाट आर यू थिंकिंग?
3: दिलवाले दुल्हनिया.
0: दिलवाले दुल्हनिया का आप आजकल का वर्जन में किसको देखना चाहेंगी?
3: शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान.
0: आर्यन खान, और उनके साथ किसको पिक्चराइज कर रही हैं?
3: अगर काजोल की बेटी कर रही हो.
0: ओ, नायसा एंड आर्यन, इंटरेस्टिंग. लेकिन अब नायसा तो मेरे ख्याल हीरोइन नहीं है, आर्यन भी हीरोइन हीरो नहीं है, तो फिर किसको देखना चाहेंगी ये बताइए, जो हीरो है वो बताइए.
3: अनन्या पांडे.
0: एंड हु विल बी विद हिम विद हर? कार्तिक?
3: नहीं नहीं, वो आर्यन खान.
0: अच्छा आर्यन तो है. अच्छा आर्यन तो है ही, आर्यन के बगैर नहीं बन सकती दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ठीक है अंशु, थैंक यू सो मच. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी, दिस इज द टाइम फॉर अ म्यूजिक ब्रेक, अ सॉन्ग ब्रेक. सॉन्ग ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को रखते हैं जारी. दिस इज वो 90s का बॉलीवुड. आप सुन रहे हैं कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. होल्ड योर थॉट्स.

0: हम आपके हैं कौन, दी एवर ग्रीन एवर हिट फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में वापस आ रहे हैं हम कॉन्वर्सेशन पे, और बात हो रही थी कि अगर 90s की कोई फिल्म आज बनती 2026 में, तो आप किस, कौन सी मूवी होती वो, और आप उसमें किस स्टार कास्ट को देखना चाहते थे। अभी एक दो फोन कॉल्स आ रही थी, सो आई वॉज वेटिंग फॉर द सॉन्ग टू फिनिश। अगर आप सुन रहे हैं तो जी कॉल कीजिए आप और मुझे बताइए कौन सी ऐसी मूवी है 90s की जो आप देखना चाहते हैं। वैसे हमें जवाब में दो तीन बातें आपने शेयर की, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और उसमें आर्यन और अनन्या पांडे, जबकि मीना का कहना था इश्क होना चाहिए दोबारा से, वो चारों को नई एक स्टार कास्ट और साथ ही साथ अंदाज अपना अपना। अगर आपका कोई थॉट है तो जरूर मुझे कॉल करके बताइए 972-235-5555। फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। अपना नाम बताइए
1: जी। कमलेश
0: जी बताइए। कमलेश
1: मैं सोचता हूँ कि सरफरोश मूवी बननी चाहिए, और क्योंकि उसमें हीरो आईपीएस ऑफिसर होता है, थोड़ा सा मैच्योर चाहिए। नए वालों में वरुण धवन और कियारा एडवानी विल बी गुड।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, वरुण धवन एंड कियारा एडवानी। तो वरुण धवन आप कहते हैं कि आमिर खान का रोल करे?
1: जी, क्योंकि वरुण धवन जब सीरियस रोल करता है वो बहुत बेहतरीन करता है। उसके फादर उसको पता नहीं क्यों गोविंदा बनाने के पीछे तुले हुए हैं।
0: आई टोटली एग्री विद यू।
1: सीरियस रोल,
0: या मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब भी मैंने वरुण को सीरियस रोल में देखा है, आई थिंक ही इज मच बेटर इन अ सीरियस रोल देन इन दैट अननेसेसरी कॉमेडी जो वो करते रहते हैं। ठीक है कमलेश, थैंक यू सो मच, सुनते रहिए। मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ। फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज आशीष।
0: जी आशीष बताइए।
2: मैं वो जो करण अर्जुन का मूवी था ना, शाहरुख एंड सलमान
0: जी,
2: आई वुड लाइक probably recast the bats of Bollywood ke actors Lakshya Lalwani and Raghav Jual.
0: Very interesting. Aur Kajol ke role mein kise dekhna chahenge aap?
2: Actually probably Kiara Advani.
0: कियारा अडवाणी, आई थिंक आजकल कियारा अडवाणी ने बाजी मार ली है, बहुत सारे लोग कियारा अडवाणी का नाम ले रहे हैं। थैंक यू सो मच आशीष, सुनते रहिए। मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ। और राइट जी, दैट वाज ऑल द टाइम वी हैड फॉर आवर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर। और बड़ी मजे मजे के आप थॉट्स लेके आते हैं, एंड दीज आर द थॉट्स ऑफ कोर्स दैट यू नो कीप्स दिस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर हैपनिंग। तो मैं जो है आपको अभी विनर अनाउंस करती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए। अराउंड एक मिनट का टाइम हमारे पास बाकी है, सो उस एक मिनट में आप देखिए मैं क्या, कौन सा गाना आपके लिए लगाऊं जो एक मिनट के लिए चले, पर इट्स ओके, सुनते रहिए और बने रहिए मेरे साथ।

0: और मैं कह रही हूँ मैथ के फॉर्मूले ने जवाब दे दिया है. विनर है हमारे कमलेश. कमलेश अगर आप मुझे सुन रहे हैं, प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
8: Haan, dekh lenge.
7: Toh fir India ki ticket kab karwaye?
8: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
9: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
10: तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: मामू, देखो क्या हो गया.
13: ओ, क्या हो गया?
12: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
13: कोई जर्मन का कमाल है.
12: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
13: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
1: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
14: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
15: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
16: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
17: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
15: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
22: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
23: प्लान या होप?
22: मतलब?
23: मतलब है, मतलब है. प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
22: ओके, तो मेरा वाला होप है.
23: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक से बात करते हैं.
22: क्यों?
23: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
17: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट द वेल्थ टैक्टिक.com.
24: सुनीता,
0: तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
0: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
4: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
24: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
25: Or Fun Asia.
26: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

0: आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में वो 90s का बॉलीवुड आप सुन रहे हैं राइट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. उफ, ये सेगमेंट करके मुझे इतना मजा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं, सारी मेरी भी वो जो यादें हैं 90s की. ये जैसे दीवाना फिल्म का आप गाना सुन रहे थे, शाहरुख खान का ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ब्लॉकबस्टर डेब्यू था ये इस फिल्म के अंदर. 1992 में आई थी दीवाना. ऋषि कपूर वॉज एस्टैब्लिश्ड एक्टर. आपको ये भी बताऊं कि 100th फिल्म थी ये ऋषि कपूर की. दिस मूवी मार्क्ड ऋषि कपूर्स 100th फिल्म एज ही प्लेड एन ऑफ कोर्स अ मैच्योर सिंगर का जो उन्होंने रोल इस फिल्म में किया, जबकि शाहरुख खान की ये पहली फिल्म थी. और दिव्या भारती की तो मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर की फिल्म थी, बट शी वाज अ स्टार बाय देन. तो खूबसूरत गाने एक बार फिर नदीम श्रवण का म्यूजिक का जादू जो उन्होंने जगाया, आशिकी में 1990 में जगाया था, दीवाना में 1992 में जगाया, और बैक टू बैक नदीम श्रवण एक टाइम पे देयर वाज जस्ट नो बीटिंग देम, दे वर एब्सोल्युटली वंडरफुल. अच्छा जी, दीवाना फिल्म से ये गाना हुआ आपके लिए. अब एक और गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ आप ही की रिकमेंडेशन पे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस. अगर आप दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट, और आपको रेडी करते हैं आपके आने वाले कल के लिए. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस, या कोई भी सवाल आपके जहन में ये बात सुन के आया है, तो आप एजी फिनटेक्स को कॉल कीजिए. 4699429888 इज दैट नंबर, 4699429888, या फिर ए जी फिनटेक्स FINTAX agfintax.com पे आप कर सकते हैं लॉग ऑन टू चेक आउट मोर. और अब ये जो खास बात मैं आपको बताने वाली हूँ, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर अर्निंग मोर देन 200,000 एनुअली, तो एजी फिनटेक्स आपके लिए एक सेमिनार लेके आ रहा है फॉर फ्री टैक्स प्लानिंग. दिस इज कॉल्ड अ फ्री टैक्स प्लानिंग सेमिनार एंड डिस्कवर. आप इस सेमिनार में दाखिल होंगे, आएंगे तो आप क्या सीखेंगे? यू विल डिस्कवर लीगल स्ट्रैटेजीज दैट विल हेल्प यू और मे हेल्प यू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन थ्रू स्मार्ट प्लानिंग. सो ये सारा जो ये फ्री टैक्स प्लानिंग सेमिनार हो रहा है आपके लिए, इसमें आप लीगल स्ट्रैटेजीज सीखेंगे, हाउ कैन यू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन, एंड व्हेन इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग टुमारो, दैट इज जुलाई द 10th, 6 PM शाम ऑनवर्ड्स, फ्राइडे 6 PM ऑनवर्ड्स. और कहाँ हो रहा है ये भी नोट कर लीजिए, इट इज हैपनिंग एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. फ्रिस्को की लोकेशन में आपके लिए ये सेमिनार होगा, ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. और साथ ही साथ अटेंडीज हु रजिस्टर फॉर द सेमिनार विल ऑल्सो रिसीव फ्री स्पेशल गिफ्ट्स. तो जबरदस्त हो गया जी, अभी जाइए और इस सेमिनार के लिए रजिस्टर कीजिए, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड, यू हैव टू रिजर्व योर स्पॉट. और आप कहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, नोट दैट आईडी, दैट इज agfintax.funasia.net. agfintax.funasia.net पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं इस सेमिनार के लिए. अटेंड कीजिए, तरीके सीखिए टू सेव योर टैक्सेस एज वेल एज रिसीव स्पेशल गिफ्ट्स. दिस इज एजी फिनटैक्स फॉर यू.
1: मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला. मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही.

जी हाँ, मर्जी तो सबकी अपनी अपनी ही होती है, लेकिन कुछ मर्जी के पीछे लॉजिक शामिल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये गाना सुन रहे थे आप एक रिकमेंडेशन पे, आप ही की रिकमेंडेशंस। कोशिश करती हूँ कि हम 90s के बॉलीवुड में रिकमेंडेशंस को प्ले करें, ऑल्दो अगर नहीं वो सूट करती हैं और जैसा मुझे कोई गाना HD क्वालिटी में नहीं मिलता तो कई बार नहीं भी प्ले किया जा सकता, उसके लिए एडवांस में माजरत। तो जी, ये जो गाना था आप सुन रहे थे फिल्म गैम्बलर से, 1995 में ये एक्शन कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें गोविंदा और शिल्पा शेट्टी हमें नजर आए, डायरेक्टेड बाय दयाल निहलानी। और ये जो मूवी है, ऑफ कोर्स इसे गोविंदा की ही कॉमिक टाइमिंग के लिए याद किया जाता है, ऑल्दो इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ हिट। बट जो है, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें किसी एक इंसान का काम याद रह जाता है, फिल्म जो है वो उस तरह की पॉपुलर नहीं होती। बट दिस सॉन्ग आई टोटली रिमेम्बर, इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल सॉन्ग। और मेरा ख्याल है कि बाबा सहगल ने भी एक ये मेरी मर्जी वाला गाना भी पहले से गाया हुआ है। अच्छा जी, ये तो हुई आपके लिए ये बात 90s के बॉलीवुड में। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए 90s का कुछ ब्यूटिफुल म्यूजिक एज वेल एज 90s की फिल्मों की कुछ कहानियाँ, जैसे कि ये कहानी थी छोटी छोटी बातें, या आप कह लीजिए किस्से 90s की मूवीज के। अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो किस्सा अभी परसों होने वाला है, अभी हुआ नहीं है वो किस्सा, मगर होने वाला है। और कब होने वाला है जी? July 12 को, विच इज संडे, कर्टिस कलवल सेंटर में। मेमोरीज बनाइए, यादें बनाइए, ब्यूटीफुल बॉलीवुड म्यूजिक को एंजॉय कीजिए विद दिस सुपर डुपर हिट डुओ। विशाल शेखर आ रहे हैं आपके लिए कर्टिस कलवल सेंटर ऑन संडे July 12। दिस इज द सुपर हिट टूर दैट दे आर ब्रिंगिंग टू डैलस। अगर आपने अब तक अपने टिकट्स नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, अभी भी 3 दिन बाकी हैं। cashpatelproductions.com, दिस इज वेयर यू हैव टू लॉग ऑन, KASH, cashpatelproductions.com पे लॉग ऑन कीजिए। और जब आप चेकआउट कर रहे हो तो फन एशिया प्रोमो कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए, 30% ऑफ मिलेगा आपको, क्योंकि आप हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं, इसीलिए 30% ऑफ फॉर ऑल द फन एशिया लिसनर्स। फन एशिया टाइप कीजिए और 30% ऑफ लीजिए इन द प्रोमो कोड सेक्शन। Check out, log on to cashpatelproductions.com. Do not miss out. I will see you there.

1999 का ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म प्यार में कभी कभी ये कल्ट क्लासिक बनी, नोन फॉर इट्स फ्रेश कॉलेज वाइब एज वेल एज आइकॉनिक साउंडट्रैक. डायरेक्टेड बाय राज कौशल, द फिल्म वाज सेलिब्रेटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मैसिव बैच ऑफ फ्रेश फेसेस एंड लॉन्चिंग द करियर्स ऑफ सेवरल बॉलीवुड स्टार्स, जिनमें रिंकी खन्ना और साथ ही साथ डीनो मोरिया और भी बहुत सारी स्टार कास्ट थी. तो जी, ये हुआ आपके लिए गाना फ्रॉम द मूवी प्यार में कभी कभी. ये वो मूवी थी जिसमें विशाल शेखर और विशाल ददलानी और शेखर जो हैं वो मिले एक बार फिर. बचपन के दोस्त थे लेकिन दोनों मिले एक बार यहाँ इस सेट पे, जहाँ विशाल अपने ग्रुप के साथ इस फिल्म के लिए कुछ गाने दे रहे थे और शेखर अपने हिसाब से गाने दे रहे थे. यहाँ इन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई एंड दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड टू फॉर्म दिस म्यूजिक कंपोजर डुओ विशाल शेखर. और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री. तो विशाल शेखर का कॉन्सर्ट अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए, हो रहा है जुलाई 12th को कर्टिस कलवल सेंटर में. गो टू cashpatelproductions.com एंड बाय योर टिकट्स नाउ. बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी रही, ऑलमोस्ट ये लास्ट गाना 90s के बॉलीवुड का आपके साथ चल रहा है एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इट्स अ ट्रीट टू माय इयर्स एंड टू डू दिस शो फॉर यू एंड फॉर ऑल द फोन कॉल्स, ऑल द मैसेजेस दैट यू लीव फॉर मी. आई एब्सोल्युटली लव इट. थैंक यू सो मच.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंख स्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेम्पल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गो पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। मायर्स पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at

0: 9728772500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with DuckTime.
1: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
2: It's Lawson.
1: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
2: It's Lawson.
1: Daddy, what is the law?
3: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Documents ya parcel bhejni hai?
8: हाँ,
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ,
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ,
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: 설계. 1. 갸벌디두. 2.
1: फनीजिया रेडियो पे ट्यून इन हैं आप. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. कुछ खूबसूरत गानों का सिलसिला तो आपके साथ मैं जारी ही रखती हूँ, 5 बजे तक मौजूद हूँ. और अब वक्त आ चला है जी आपको देने का करंट, एक्चुअली वेदर अपडेट से हम शुरू करते हैं. मैं हूँ किरण, दिस इज ऑफकोर्स योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. अच्छा, आज थर्सडे जुलाई द 9th, 4:40 PM इन द स्टूडियो, और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है जी 98 degrees. However, इट फील्स लाइक 103. तो काफ़ी शिद्दत की गर्मी है बाहर और चमकता हुआ सूरज है. इट इज़ एब्सोल्युटली सनी, हॉट विद हाइज इन द अपर 90s, जबकि शाम रहेगी क्लियर एज वेल विद लोअर्स इन द लोअर्स अराउंड 80. सो इट इज़ of course going to be a very hot day. साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि पोलन काउंट आज का 5.4 है, which is medium. However, the UV index is 11, which is extremely high. तो अगर आप बाहर प्लान कर रहे हैं, अगर आप मेरी तरह वॉक के शौकीन हैं कि जी शाम में वॉक तो करनी ही है, तो या तो थोड़ा सा देर शाम जाइए जब सूरज की तपिश या शिद्दत थोड़ी सी कम हो गई हो, या फिर प्लीज़ कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी, लगा लीजिए सनस्क्रीन्स एंड कीप योर वाटर bottles ready, because hydration is very, very important. Otherwise, you really don't want to deal with the dehydration issues. Usi ke saath sunrise aaj ka hua 6:24 AM pe, which is 6:24 subha, jabki aaj ka sunset hoga 8:38 PM. This weather forecast is brought to you by Malabar Gold and Diamonds. Is gaane ke us paar leke aungi aapke liye currency update, gold price update, traffic update, lots of things lined up right here for you. Stay tuned.

और गोल्ड प्राइस अपडेट का आपको अपडेट देते चले जी. goldprice.org के मुताबिक इस वक्त गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,123.44, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $132.57. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.63 का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $50.77 का इजाफा हुआ. And that's pretty much all that I have for you with your finance matters right here on Sunehri Kiran. अगला गाना लगाते हुए मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहती हूँ कि the views and opinions that are expressed in these live announcements as well as the interviews that we do here on our show, जो भी आप live announcements सुनते हैं, interviews सुनते हैं, they are paid advertisements and does not necessarily share the official views of the radio station nor the RJ.

फिल्म सत्या से सुन रहे थे आप ये गाना. 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई, शॉट ऑन अ वेरी लो बजट. 2 करोड़ का बजट था इस फिल्म का, लेकिन बन गई इतनी बड़ी हिट कि कल्ट क्लासिक के तौर पे सत्या को याद किया जाता है. तो जी, आज का वो 90s का बॉलीवुड अब आता है इख्तिताम पे. कल मिलूंगी फिर. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. टुमारो इज फ्राइडे. वैसे तो मैं 2:30 ऑनवर्ड्स आपके साथ होती हूँ, बट 3 PM टू 4:30 PM इट विल बी किड्स जंक्शन. आपकी बच्चों की रिक्वेस्ट ली जाएगी. यू आर अ किंडरगार्टनर, यू आर एन एलिमेंट्री गोअर, मिडिल स्कूल गोअर, हाई स्कूल गोअर, यू कैन गिव मी अ कॉल और अपने गाने, पसंद के गाने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. आई विल ब्रिंग गिव अवेज फॉर यू किड्स, सो बी देयर एंड कीप दोज कॉल्स कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. टुमारो 2:30 to 5 PM राइट हेयर ऑन द सेम चैनल 104.9 FM. बने रही है हमारे साथ. फन एशिया आपको रखता है एंटरटेन्ड एज वेल एज इन्फॉर्म्ड 24/7 365 days a year. हम रहते हैं आपके साथ. I will see you tomorrow.

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

पति पत्नी को घूमने जरूर जाना चाहिए, पति और पत्नी को घूमने जाना चाहिए। पहले मुझे पता है आपकी शादी नहीं हुई थी तो आप काफी घूमते थे, कभी अकेले घूमते थे, कभी इनके साथ घूमते थे, कभी उनके साथ घूमते थे। उनका मतलब अपने दोस्तों की बात करो, गलत मत समझा करो। पर शादी के बाद पति पत्नी को ज्यादा घूमना चाहिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि रस्ते में कभी गधा ना मिले, क्योंकि अगर गधा मिल जाए तो पत्नी मजाक से बोल सकती है कि वो देखो आपके रिश्तेदार जा रहे हैं, नमस्ते कर लो। और आगे से पति कहता है हाँ हाँ नमस्ते ससुर जी। अब रिश्तेदारों में तो फिर जान पहचान थोड़ी बनती रहती है ना। यू लिस्निंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, मेरा रिश्ता आपके साथ रहता है जी, मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM एंटरटेनमेंट का है ये रिश्ता। और ये रिश्ता जो है ना सबसे खूबसूरत है, क्योंकि इसमें हमारे को कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको एक्सपेक्टेशन है कि मैं दिवाली पे आऊंगा, ना मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे क्रिसमस पे गिफ्ट देंगे। इट इज़ ऑल गुड ना, हम यहीं पे अपनी एक्सपेक्टेशन सारी सेटल कर लेते हैं। व्हाट अ वंडरफुल रिलेशनशिप।

0: ऐसी रिश्तेदारों की बात करते करते एक पत्नी ने बोला अपने पति से, तुम्हारे से अच्छा है कि मेरी शादी ना किसी भूत से हो जाती। पति कहता है, कमाल की बात करती है, ऐसे थोड़ी होता है, रिश्तेदारों में शादियां थोड़ी होती हैं।
1: बिंदास है ये, थवरा है ये, लोभी है, होशियार है।
0: This part of the show is brought to you by attorney Omar Khwaja. If you ever get involved in a car accident, you're a slip and fall, किसी दुकान पे, कहीं किसी की जगह पे, किसी के commercial lot पे, you can get compensated for it. If you didn't know, then I'm telling you कि आपके पास एक नाम होना चाहिए जिसका नाम है जी attorney Omar. Go to the website which is attorneyomar.com, get all the information there, and the best part is that he doesn't charge you till you win. And majority of the cases you will win. मेरे साथ ऐसा तीन बार ही हो चुका है. I've been in an accident. एंड गलती नहीं थी, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में किसी की गलती नहीं होती, एक्सीडेंट बस हो जाता है. सो इफ यू आर एवर इन्वॉल्व्ड इन वन, एक नाम हैंडी रखिए, अपने दिमाग में रखिए, अटर्नी ओमर, एंड ही विल गेट ऑल द प्रॉब्लम्स सॉर्टेड आउट फॉर यू. लेट्स टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक और उसके बाद आते हैं वापस विद सम मोर इन्फो एंड सम मोर फन.

0: गोरिया ने पागल मुझे किया और अगर आपको पागल कर दिया है इस परेशानी ने कि मेरे को नया बिजनेस लेना है, मुझे लोन कहां से मिलेगा, तो परेशानी दूर करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है ना, उनका नाम है शाहिद पंजवानी, ही इज विद द एसबीआई लोन एक्सपर्ट, और वो बताएंगे आपको किस तरह से नए बिजनेस को लोन मिल सकता है। एंड इफ यू बाइंग अ ब्रांड न्यू बिजनेस, हाउ कैन यू गेट दैट डन। आई एम नॉट द एक्सपर्ट बट लेट मी कॉल हिम हियर। उससे पहले आपको बता दूं उनका फोन नंबर 8177868331778633838। वेरी गुड इवनिंग टू यू पंजवानी साहब, हाउ आर यू?
1: I'm doing great. Good evening to you and all listeners.
0: सर, ये सवाल सबको आता है और ये परेशानी सबको सताती है कि भाई नया बिजनेस लेने की ख्वाहिश तो सबकी है, एवरीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू बिजनेस, बट वी कम इन अ प्रॉब्लम कि भाई इस ब्रांड न्यू बिजनेस के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मैं क्वालिफाई करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे वो लोन मिले। तो शाहिद भाई, व्हाई डोंट यू टेल आवर लिसनर्स हाउ टू गेट दैट डन?
1: दैट्स वेयर वी कमिंग। ये फंडिंग जो है ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग एज यू मेंशन बैक ऑफ द माइंड, घर खरीदना है अमेरिका में और बिजनेस शुरू करना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है। और होता ये है कि जब हम घर खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं, हमारी पर्सनल डेब्ट और इनकम के सामने उतने हो जाते हैं कि फिर जब बिजनेस या रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बात आती है तो मेनी पीपल अज्यूम दैट आई एम मैक्स्ड आउट ऑन माई लोन एंड आई डोंट इवन नो इफ आई एम गोइंग टू क्वालिफाई। सो लिसनर्स, वट आई वुड लाइक टू इन सिंपल इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो या आप कोई बिजनेस खरीदना चाह रहे हो, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट योर ओन पर्सनल इनकम, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट योर ओन क्रेडिट स्कोर। वट वी लुक एट इट और वट एनी लेंडर और एनी अंडर राइटर इज गोइंग टू लुक एट इट, फॉर एग्जाम्पल, टू क्विक एग्जाम्पल, आप रेंटल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के फॉर्म्स क्या, उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम क्या जनरेट होने वाली है और आप कितने में खरीदने वाले हो, उसको देखा जाएगा, वो प्रॉपर्टी और उसका रेंट। अगर वो प्रॉपर्टी के लोन के सामने वो रेंट इतना आ रहा है कि वो पेमेंट कवर कर सकता है, डोंट वरी अबाउट योर ओन क्रेडिट। सेम थिंग अप्लाइज टू इफ यू आर बाइंग एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग बिजनेस। सामने वाले का बिजनेस जो आप खरीद रहे हो उससे आप 2 साल का पीएनएल मांग लो उससे, या तो फिर जो ब्रोकर इन्वॉल्व है उनसे, एंड बेस्ड ऑन दैट पीएनएल यू कैन प्रोवाइड इट टू अस और यू कैन क्रंच योर नंबर्स योरसेल्फ एंड सी के उसमें इतना कैश फ्लो, इतना जूस है कि क्या जो लोन आप मांग रहे हो उस बिजनेस को खरीद

कहते मत मत तड़पाए से तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: गोली मारनी चाहिए उस इंसान को जिसने कहावत बनाई थी, हंसी तो फंसी। इतनी हंसा चुका हूं, खुद फंस गया हूं। मतलब खैर मेरी शादी हो चुकी है, वो अलग बात है, पर ये गलत है। हंसी तो फंसी, ऐसा नहीं होता। आपने कितनी हंसा ली, कहां फंसी? आप आज भी अपनी बीवी को हंसा लेते हो, फिर भी नहीं आपके जाल में फंसती, उल्टा आप फंसते भैया।
1: सच्ची कहानी।

0: अभी तो मैं ये बोलूंगा इंग्लैंड जैसा भैया कोई हार्ड हिच नहीं है, क्योंकि भाई 4-0 से लीड कर रहे हैं इस सीरीज को. T20 टुडे आल्सो वाज द गेम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. इंडिया मेड 158 for 7 एंड इंग्लैंड केम बैक स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट 13.5 ओवर. धज्जियां उड़ा दी हिंदुस्तान की. आता हूँ ब्रेक के बाद वापस.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
9: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं.
14: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया.
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया.
14: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
16: Visit www.sanadainc.com today.
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
17: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

Wonderful track there, and in the music of Amit Trivedi. And every time I hear Amit Trivedi's music, I hear something fresh, I hear something new. You're listening to your Evening Drive Time show right here on Fun Asia Radio, 104.9 FM, bringing the music to you, of course, and bringing the community together to the music. I'm going to be with you till 7 o'clock. 5:46 ho chuke hain. This is your Evening Drive Time show. And today was the game between France and Morocco. France is leading 2-0, got into the first semi-finals there, and India got beaten quite badly today. Today, पिछले चार मैचों से ये हाल है भाई. अगला एक मैच और बचा है, शायद उसमें इज्जत बच जाए. पहला मैच तो बारिश ने बचा लिया, उसके बाद ऐसे पटाखे बजने शुरू हुए, और उससे पहले आयरलैंड ने हमारी खूब वाट लगाई. एंड देन दे वर सेइंग कि सूर्यवंशी को लाओ. आई अंडरस्टैंड सूर्यवंशी को लाओ, बट सूर्यवंशी तीनों गेम्स जो खेली हैं अभी तक नहीं चल पाए. एंड उसकी वजह मैं ये नहीं कहता कि ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट आई थिंक कभी कभी थोड़ा सा पेस करना एक इंसान को अपनी लाइफ को जरूरी होता है. 158 वॉज द टोटल स्कोर दैट इंडिया मेड इन देयर 20 ओवर्स. वैभव सूर्यवंशी 15 ऑफ 10, अभिषेक 16, दोनों ओपनर्स नहीं चले. Shreyas Iyer, the guy who led us today, was at 80 runs in 49 deliveries, not out rahe. Shivam Dubey, 22, and then Tilak Verma, 11, getting the team to 158 for 7. England came back and did 159 for the loss of just one wicket in 13.5 overs. 37 gende abhi baki thi, but agar inke top scorers ki baat ki jaye, Phil Salt not out, 59 of 42, and Harry Brook, 79 of 35. That's what the game looked like. For now, it is one more track. Uske baad aa raha hu wapas right here on Fun Asia.

0: अगर आप भी कहीं नहीं जाते बाहर, आप भी रहते हैं परेशान और आपको लगता है कि ये जो डेट पाइल हो गया है यार, वो मुसीबत हमारे पे जो आ गई थी लाइफ में एक बारी, चाहे वो एक अनप्लान्ड इवेंट हो, कोई एक अनप्लान्ड आपका विजिट हो इंडिया को, विच कैन बी कॉज बाय एनी अमाउंट ऑफ रीजंस, बट दिस सिचुएशन कैन कम इनटू एनीबॉडीज लाइफ एंड दैट इज द सिचुएशन ऑफ बीइंग इन डेट. एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ डेट इज नॉट द वंस दैट यू हैव टेकन अ लोन, बट आई थिंक द वर्स्ट पार्ट ऑफ डेट is the credit card debt which never seems to end. Kaun karega isko khatam, kaise hoga ye khatam? It's not me. It is going to be Aman with Ura Debt who's going to tell you how to get out of this problem. Here we go. Ura ji, Aman ji, good evening. How are you? Why don't you tell our listeners ke aap kis tarah se help karte hain our community and many others who have gotten out of debt through the help of Ura.
1: Ji bilkul. सुनने वाले सभी लिसनर्स को ऊरा और अमन की तरफ से नमस्कार. महीना हमेशा जब शुरू होता है तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड वाले चिट्ठियां भेजनी शुरू करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दें, और हम आंखें बंद करके बिना उस स्टेटमेंट को पढ़े कि कितना हाई इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं हर महीने दर महीने, हम मिनिमम पेमेंट स्केड्यूल कर देते हैं इसी मुगालदे इसी गलतफहमी में कि अगले महीने देखी जाएगी, हम पक्का उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन बजट फिर वहीं का वहीं. तो अगर आप भी परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड की जो मिनिमम पेमेंट तो आप भर रहे हैं इसी गलतफहमी में कि क्रेडिट स्कोर ना खराब हो जाए, लेकिन क्रेडिट स्कोर भी खराब हो रहा है, कर्जा भी नहीं उतर रहा, तो आप ऊरा को कॉल कीजिए. आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाएगा और आधे की आसान सी इंटरेस्ट फ्री किस्तें बन जाएंगी. एग्जैक्टली सही सुना, इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स और आधे से ज्यादा कर्जा माफ. और सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, चाहे आपके और आपकी वाइफ के जॉइंट क्रेडिट कार्ड्स हों या आप दोनों के अलग अलग कार्ड्स हों, उन सबकी एक पेमेंट बन जाएगी, सो दैट इजी बजटिंग करनी हो. इसके अलावा आपका कोई पर्सनल लोन है जहाँ कार और ट्रक रीपोजेस हो चुका है या फिर गाड़ी टोटल हो गई है, उन लोन्स को भी आधे से ज्यादा नेगोशिएशन करके माफ करवाया जा सकता है. सिंपली मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए और आधे का कर्जा माफ करवाइए. कॉल मी 1-888-888-9914 या फिर आप सीधी बात कर सकते हैं 916.
0: And I think I've lost you there, Aman Paji. No worries. You can always log on to ura.org. That's ooraaor.org. Here we go with one more track. Aur uske baad aa raha hoon ek aur gana leke. Actually, before I go to that track, why don't I go to this one, jo ki lineup kiya hua hai maine aapke liye. And today we're celebrating a birthday of this actress, which you will tell me. Abhi contest koi nahi hai, but I want to see your knowledge. So this girl was born lady, rather, up to lady ho chuki hai, born on today's date in the year 1960. Former actress, model and beauty pageant holder, known for winning the title of Femina Miss India in 1980. She represented India at Miss Universe 1980 as well and started her acting career with films playing a leading role in the film Katil 1988 and then in Tridev. Do you know who she is?

0: And that was the movie Tridev, which was my favorite. Ek time pe bahut zyada baar TV pe aati thi ye film aur isko dekh dekh ke man nahi bharta tha. This was that kind of a movie with the lead star actor bhi bahut the ji, Sunny Deol sahab the saath mein, Jaggu Dada. And I think Nasiruddin Shah Saab, what a wonderful role he played, Trishi Topi Wale. The song always remains with us. But nonetheless, celebrating Sangeeta Bajlani once again, I'm wishing her a very happy birthday. Ek chote se commercial break ki taraf ja raha hun, then coming back with the giveaway for Mirage Lounge in McKinney just after this.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
10: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
11: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: It's Lawson.
12: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
13: It's Lawson.
12: Daddy, what is the law?
14: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
18: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
19: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com
13: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
20: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
13: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
20: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
13: ये क्या होता
20: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
21: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
22: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available.
23: शक्ति संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंख स्थापना महोत्सव में एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला फ्री स्कूल इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट शाम को और भी खास बनाएंगे गो पूजा नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग किड्स मेला भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर 7082 Country Road.

Roshan is the bringer of this song to you all. Today marks the 9th of July, and 9th of July we also celebrate Tom Hanks, the actor from Forrest Gump. That came out in 1994. Lal Singh Chadda, jin se inspired hoke bani hai ji, has starred in many other movies, jaise ki Castaway, and Castaway Wilson. Jab Wilson gum jata hai, bada dukh hota hai yaar. The Green Mile, Saving Private Ryan, Apollo 13, and many more. Today we are celebrating this Concord-born individual named Tom Hanks. He is 70 years old today, and he's also won two back-to-back Academy Awards for Best Actors for his roles in Philadelphia in 1993 and, of course, Forrest Gump in 1994. Wishing him a very happy birthday, and with that, aapko ye bata dun, log bada ye poochte hain, margdarshan kya hota hai? Arre, margdarshan kya hota hai, bhaiya? Margdarshan wo hota hai, marg ko kehte hain sadak, hai na, rasta. मार्गदर्शन, दर्शन कहते हैं मतलब किसी को मिलना, भेंट होना, आपका मीटिंग हो जाना. तो जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं और रास्ते में आप 104.9 FM लगा लेते हैं और मेरे को सुन लेते हैं, बस आपका मार्गदर्शन हो जाता है. हाँ, अगर आपको टैक्स का मार्गदर्शन करवाना है तो उसके लिए AG FinTax का नाम याद रखिए भैया. टैक्सेस के मास्टर हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म है, एंड दे विल मेक श्योर दैट दे ऑल्सो क्रिएट सम रिटायरमेंट प्लान्स फॉर यू. अभी मन सोचिएगा, मैं तो अभी 30s में हूँ, 40s में हूँ, रिटायरमेंट प्लान क्या करना है? अरे भैया, जल्दी शुरू करोगे तो ज्यादा पैसे बनेंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको पते की. With that, taking you to the next track, and this is a celebration of another birthday. I'm going to play a track, और आप मुझे बताएंगे कि मैं किस बर्थडे की बात कर रहा हूँ आज के दिन. The person who gives me the right answer, they will get themselves एक $20 off when you spend $50, and that is going to be with the Mirage Hookah Lounge, जो कि आपके लिए खुल चुका है right here on Colin McKinney Parkway. And they have some wonderful food. Hum kha ke aaye hain, ja ke aaye hain. If you like hookah, that is another place to go. If you don't like hookah, still go for the food and for the music and for the drinks. I am giving you an opportunity. Jahan aap jeetenge $20 off your $50 order. I am asking you about this gentleman's birthday that we are celebrating today. His birth name was Harihar Jethalal. Aap mujhe batayenge main kiski baat kar raha hun. He's an actor, by the way. Screen name kuch aur hai. Harihar Jethalal जरीवाला, चलो ये भी दे दिया, हरिहर जेठालाल जरीवाला. आज के दिन जन्म हुआ था 9th of July 1938. वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन बॉलीवुड सिनेमा ऑफ इट्स टाइम. यू हैव टू टेल मी हिज नेम. हियर वी गो विद अ ट्रैक, एंड द पर्सन हु गिव्स मी द राइट नेम. बस सीधा सीधा, आज कोई कॉलर नंबर 3 नहीं, क्योंकि आज मेरी घर पे चली थी.

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था, ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। I felt completely stuck. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
6: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
7: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
1: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभाल लेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

यार मैंने ये कहावत सुनी है जो आपने भी सुनी है क्योंकि आपके भी कान हैं, आप भी सुन सकते हैं। कहावत ये थी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये डायलॉग सुना है ना आपने? नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती ये सब लोग कहते रहते हैं, पुराने लोगों से बात चलती आई हुई है। मेरे को एक सवाल है, वणी जड़िया साईं जब ताली एक हाथ से नहीं बजती, रब ने दो दिए दोनों से बजा लो ना। बड़ी साईं इतनी परेशानी काय को लेके बैठे हो, दोनों हाथ से ताली बजाओ, एक ताली से नहीं बजती तो ना बजाओ।

ताली एक हाथ से नहीं बजती और गाली एक मुंह से नहीं सजती मेरे दोस्त। सारे मिलकर गाली दिया करो जिसको देनी होती है ना, इकट्ठे इफेक्ट डालोगे तो वो क्या कहते हैं होता है, बस कुछ इफेक्ट होता है। इस गाने में नाना नाना नाना नाना पता है क्यों है इतनी बारी, क्योंकि मैंने अपने नाना को देखा नहीं, मैंने सिर्फ फोटो देखी है, तो मैं उसी बहाने याद कर लेता हूँ, नाना जी कैसे हो, सब ठीक, थैंक यू फॉर माय मम्मा एंड थैंक यू फॉर मम्मा फादर पिकिंग एंड फादर मम्मा बर्थिंग मी, एवरीथिंग गुड ग्रेवी। This part of the show, Vani Sai, brought to you by none other than Passion Health Care Physician, Vani Sai, Passion Health Care Physician, both location are in Dallas. Mein. Aapke bhi ghar ke paas ek location jarur hogi, Passion Health Care Physician naam hai Vani Sai, yaad rakhna hai, Passion Health Care Physicians. The best part is that they take care of you when it comes to any of your PCP needs, ya just a one-time visit. Now, if you do make them your PCP, then every time you go for a checkup, 30 minutes ka time aapko dete hain to understand what's really going on with you, man. ये वो दोस्त है जो सच में बिठा के बात करता है, ऐसे नहीं कि हाँ चल देखते हैं क्या होगा, no, these guys are really your two friends, they are here to make sure that you, your family and the community lives healthy lives, and for that all you have to do is visit one of their locations next time you have a need, and that is Passion Health Physicians right here in DFW with Passion Health Care Locations. Make sure to check them out if your any medical need arises. For now, a beautiful number coming to you

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
2: It's Lawson.
1: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
2: It's Lawson.
1: Daddy, what is the law?
3: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
4: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
6: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
7: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
11: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
10: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
11: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
12: Mamu, देखो क्या हो गया.
13: ओ क्या हो गया?
12: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
13: ओए जर्मन का कमाल है.
12: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
13: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
14: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
15: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
16: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
17: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
16: विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस.com और कॉल 214-666-6255.

इस छोटे से संसार में एक अच्छे से खाने की जगह बना लो भैया, क्योंकि तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज नाउ ओपन इन गार्लैंड फॉर यू एंड देव बीन ओपन क्वाइट सम टाइम, बट ये जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन और पंजाबी फूड आपको खिलाता है जी, स्पेशली फॉर स्पाइस लवर्स दिस इज अ डेस्टिनेशन सर्विंग अप सिजली तंदूरी प्लेटर्स या रिच करीज, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स हों जैसे कि मैंने कहा, बट द डिफरेंस इज दैट दे ब्रिंग यू दैट होम स्टाइल पंच, स्मोकी तंदूरी कबाब, वेलवेट करीज, फ्रेश हॉट नान्स, एंड अगर आप वहां जा ही रहे हैं तो आपने मेरे कहने पर वहां का गोभी मंचूरियन जरूर ट्राई करना, आई थिंक दैट्स वन यूनिक आइटम। आपको जो गोभी मंचूरियन से एक्सपेक्टेशन है ना वो आपकी बिल्कुल चेंज होने वाली है। ऑलराइट, फॉर दैट यू जस्ट हैव टू गो एंड एंजॉय दिस लवली फूड एट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। फॉर नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, गुड नाइट, बट ये बताता चलूँ कि मेरे बाद आएगी जी इपी द हिपी एंटरटेनिंग यू ऑल द वे टिल 10 o'clock दिस इवनिंग, and I'm going to leave you with two lovely tracks. Aap mujhe kahenge thank you for those tracks because I am remembering one legendary actor, Gurudutt Sahab, jinka aaj ke din hota hai ji janmdin. He passed away in 1964 on the 10th of October, but he was born on 9th of July, today's date. The year was 1925. Birth name Vasant Kumar Shiv Shankar Padukone, and his screen name, as we know, was Gurudutt. बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, बहुत अच्छे गाने हैं, एंड आई एम गोना लीव विद यू विद टू ऑफ दोज ट्रैक्स विच आई पर्सनली इंजॉय। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये शो इंजॉय किया होगा, ये दो गाने इंजॉय कीजिए एंड दुआओं में मुझे याद रखिए। नाउ आई विल सी यू ऑन मंडे बिकॉज मंडे टू थर्सडे इज माई शो विच इज द बिंदास शो, थैंकिंग फनेशिया फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड जाते जाते अपना ख्याल जरूर रखिए यार, एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड योर वेल बींग। दोबारा से मेरी बात को समझिए, आपकी दुनिया में जो भी है, बीवी, बच्चे, घर, गाड़ी, आपके पैशन, आपके खाने का स्वाद, आपके मज़े, ये सब आपकी सेहत पर डिपेंडेंट है। सो इफ़ यू आर वेल दीज थिंग्स विल कम अराउंड एंड गिव यू जॉय, बट इफ़ यू योर सेल्फ आर नॉट वेल, अगर आप ही अंदर से खुश नहीं हैं, आप ही अंदर से सैड रहेंगे तो कैसे खुशी बांटोगे भैया। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द मैन और द वुमन इन द मिरर। गुड नाइट, रिमेंबरिंग गुरुदत्त साहब, दीज टू लवली ट्रैक्स फॉर यू।